और तुमसे हो हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करनी थी। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्श 1967 के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की और आशा जी मूवी का नाम पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

0: परवर का ये सॉन्ग है और आप जानते हैं रफ़ी साहब कितना सुंदर सुंदर गीत को गाया है, तो ये आप सबके लिए भी है।
1: There is no need for panic. We are crossing some highways. Please remain where you are. And for your entertainment, Miss Colette will give you an exciting cabaret number.

और आप नाराज खुदा कह रे करे दोस्तों, क्या जरा ठहर तुझे समझाऊं। पूजा का फूल है, मूफी का नाम है, नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है।

करा रे साहे जय मुखर्जी विजयंती माला का ये फिल्म इशारा जोंग का और ये नाम है। और दोस्तों ये सब पुराना पुराना गीत कितना अच्छा लगता है।

मशहूर एक्टर मिस्टर भारत यानी कि मनोज कुमार का मृत्यु हो गया है 4 अप्रैल 2020 को। तो बहुत दुख की बात है दोस्तों, ये एक बड़ा एक्टर था और उन्हीं के बारे में मैं एक दो बात करूंगा। हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, पैदा हुआ जुलाई 1973 तक अबोताबाद पाकिस्तान में। 10 साल की उम्र में परिवार के साथ दिल्ली चला गया, इसलिए कि लड़ाई था, इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे, तो परिवार के साथ चला गया दिल्ली। दिल्ली में हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जाए पहले मूड का काम किया, एक मूड आर्टिस्ट था या मूड आमतौर पर था मनोज कुमार। तो उसके बाद वो चला गया हिंदी फिल्मों में। मनोज कुमार का इडोल था दिलीप कुमार और अशोक कुमार, इसलिए अपन नाम रख दिया मनोज कुमार। ये फिल्म शबनम जब देखा तो दिलीप कुमार का फिल्म था और इसी फिल्म के देखने के बाद ये अपन नाम तुरंत बदल दिया मनोज कुमार। और पहला फिल्म जो बॉलीवुड उन दिनों में नहीं था लेकिन इंडियन फिल्म में जब काम किया, तो पहला फिल्म जो था वो था काश की गुड़िया, 1966 में ये फिल्म रिलीज हुआ। उसके बाद फिल्म मिलन पिया मिलन की आस, फिल्म रेशमी रुमाल 1927 तक में, विजय भट्ट का फिल्म हरियाली और रास्ता, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे, आशा माला सिन्हा के साथ मनोज कुमार फिल्म में काम किया। 1966 में राज खोसला का वो कौन थी, 1966 में विजय भट्ट का हिमालय की गोद में, मनोज कुमार माला सिन्हा के बाद एक बार फिर इस फिल्म में काम किया। फिल्म दो बदन जिसमें आशा परेख के साथ एक्ट किया। बहुत से रोमांटिक फिल्मों में काम किया 1966 में दोस्तों, जैसे कि अपना अपना बना के देखो, नकली नवाब, पत्थर के सनम, फिल्म साजन, सावन की घटा, अपने हुए पराये, फिल्म पहचान, आदमी, फिल्म आदमी जहां पर अपन इडोल दिलीप कुमार के साथ काम किया, फिल्म गुमनाम, फिल्म वो कौन थी, ये सभी फिल्मों मनोज कुमार का थे। और एक बड़ा फिल्म जो मनोज कुमार ने बनाया वो था फिल्म उपकार। इस फिल्म का एक सॉन्ग मैं चलाऊंगा।

मनुष्य कुमार बड़े दुख के बात है दोस्तों कि उनका मृत्यु हो गया है। मनुष्य कुमार न सिर्फ एक्टर था, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, स्क्राइफर, एडिटर और साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन भी मनुष्य कुमार थे। मनुष्य कुमार निकली फैफन शस्त्र के बाद है जब वो फिल्म यहाँ दोस्तों एक रिवोल्यूशनरी फिल्म बनाया जिसमें उनका नाम भारत कुमार पड़ा। वो था फिल्म शहीद निगरी फैफन शस्त्र के बाद है। और ये फिल्म बनते समय मनोज कुमार दो या तीन हफ्ते तक वो जहाँ जेल खाना जहाँ पर ये फिल्म बना वहाँ पर सोया, वहाँ पर रहा भी, इसलिए कि वो फिल्म से मनोज कुमार जब एक फिल्म बना रहे थे तो ये अपन ध्यान और जितना दिल दिमाग है सब वही पे लगा रहे थे। तो वहाँ जहर खाना में रह कर और वहाँ पर ये फिल्म बनाया। लेकिन फिल्म शस्त्र उसी साल जब पाकिस्तान इंडिया का ओवरलॉक था तो प्रेमी लाल बहादुर शास्त्री मनोज कुमार से कहा कि एक कहानी जय जवान जय किसान का एक कहानी बनाने को। तो मनोज कुमार ने लिखा फिल्म उपकार जिसमें प्रेम चोपड़ा उनका छोटा भाई था। आप सभी ये फिल्म जरूर देखे होंगे। ये फिल्म पहला फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मनोज कुमार को मिला इसी फिल्म में। और एक दूसरा फिल्म जो मनोज कुमार के था फिल्म शोर। फिल्म शोर मनोज कुमार, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन बहुत से लोग इस फिल्म में काम किया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा।

स्वर्गीय मनोज कुमार यार सीफन तक ने 3 बड़ा फिल्म बनाया, जैसे फिल्म रोती, कपड़ा और मकान। लेकिन फिल्म सीफन तक ने फिल्म बनाया जो जिसमें सिनत अमन, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन काम किया। लेकिन सैफन सीफन के बाद है जब फिल्म सन्यासी में काम किया और बनाया भी हेमा मालिनी के साथ। सेशन सीफ देखनी, सेशन सीफ देखिए फिल्म 10 नंबरी। लेकिन एनम तक के बाद जब मैंने आपसे बता चुका हूँ कि अपन इडोल दिलीप कुमार के साथ फिल्म क्रांति में काम किया, ये एक आसादी की कहानी थी। लेकिन फैफन नीखन तक में मनोज कुमार एक आखिरी फिल्म में काम किया, वो था फिल्म मैदाने जंग। ये फिल्म फ्लॉप हो गया, फिर भी फिल्म मेरा नाम जोकर में भी छोटा सा रोल अदा किया जिसमें राज कपूर का ये फिल्म था, तो मनोज कुमार भी इसमें छोटा सा रोल अदा किया। यार लगभग 40 साल मनोज कुमार फिल्म में काम किया दोस्तों, और जैसे मैंने कह चुका वो सिर्फ न एक्टर थे लेकिन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, स्क्राइफर और एडिटर भी था। फिल्म हरियाली और रास्ता जिसमें माला सिन्हा के साथ खेला, उस फिल्म का एक सॉन्ग

फिल्म उपकार का उपनामक के समय दोस्तों शूटिंग के समय मनीष कुमार सुबह 5 बजे शुरुआत करते थे अपन शूटिंग का, तो आशा परेख इस बात से खुश नहीं था और इन दोनों में आपस में प्रॉब्लम हो गया। तो इसी कारण जब फिल्म उपकार का प्रीमियर हुआ तो आशा परेख नहीं गया वहाँ पर प्रीमियर पर, फिर भी निखिल शास्त्रक में दोनों दोस्त बन गया और मिलकर फिर फिल्म साजन में काम किया। तो ये जैसे फिर के बात है जब अल्कबीन फरकी सिंह था इंडिया में तो शिवसेना में भाग लिया मनोज कुमार का शादी हुआ शशि गोस्वामी के साथ, दो बेटा है विशाल और कुनल। विशाल एक सांगर या कि गायक और कुनल एक एक्टर। मनोज कुमार भी साई भक्त है। तो ये एलफ के बात है जब शिरडी में एक रास्ता का नाम रखा गया मनोज कुमार गोस्वामी रूट। मनोज कुमार का एक हांडल स्मारक था भी, और ये हांडल स्मारक फिल्म शांति ओम शांति जब बनाया गया, आप जानते हैं शाहरुख खान का फिल्म ओम शांति ओम, तो मनोज कुमार का ये हांडल स्मारक वहाँ पर लोग इस्तेमाल किए और मनोज कुमार से इजाज़त नहीं मांगा। तो मनोज कुमार एक बेहतर रेक साक में चलाया और ये साक को जीता। मनोज कुमार आप जानते हैं दोस्तों मिस्टर भारत के और कहानी है। एक सॉन्ग मैं पेश करूंगा वो है फिल्म दो बदन, निखिल शास्त्रक की फिल्म रिलीज हुआ, आशा परेख के साथ मनोज काम किया इस फिल्म में।

0: मलिक,
1: मनोज कुमार। मनोज कुमार एक्टिव था निहरी सिविल फेथ तक से लेकर निहरी निहन निहन तक में इंडिया फिल्म में। दो जैसे मैंने कहा दो बेटा और मनोज कुमार निहरी तुए निहन तक में उन्हें पद्मा श्री का पद्मी मिला। उसके बाद दादा पल के अवार्ड 2015 के बाद है जो उन्हें दादा पल के अवार्ड मिला। 7 फिल्म फेयर अवार्ड मनोज कुमार जीता उस और 1 नेशनल फिल्म अवार्ड भी मनोज कुमार को मिला। निहिन निहिन सेस तक में एक आखिरी फिल्म जो रिकॉर्ड किया वो था फिल्म जय हिंद, जिसमें उनका बेटा कुनल ने काम किया, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गया। सीफंड के बाद है जब फिल्म पूरब और पश्चिम बनाया तो ये फिल्म 50 हफ्ते से ज़्यादा, दोस्तों जी हाँ, ये फिल्म 50 हफ्ते से ज़्यादा रिलीज हुआ लंदन में। आप सोच सकते हैं एक साल में 25 तक वीक होता है ना, तो मनोज कुमार का फिल्म लगभग एक साल लंदन में लगातार पेश किया गया। वो था फिल्म पूरब और पश्चिम। चांद सी महबूबा फिल्म हिमालय के गोद में का एक सॉन्ग है, मनोज कुमार जिसमें काम किया।

मनोज कुमार, स्वर्गीय मनोज कुमार का मृत्यु हो गया, इसे मैंने शुरुआत में कहा दोस्तों। तो निघंटिन इन तख्तक में बॉक्स ऑफिस हिट क्रांति जब अपन इडोल दिलीप कुमार से बनाया, तो इस फिल्म इतना पॉपुलर था दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कि दुकानों में वहाँ पर फिल्म क्रांति का टी शर्ट, यास फेस्ट और सिर्फ ऑन सिर्फ फेस्ट यास ऑन द हुड भी लोग बेचते थे। इतना पॉपुलर था ये फिल्म ये सब गांव में, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। फिल्म उपकार का एक सॉन्ग मैं और पेश करूंगा, दीवानों से मत पूछो दीवानों पर क्या गुजरा है।

0: थे क्या?
1: दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पर क्या, गुजरा है फिल्म उपकार का सॉन्ग। अभी माइटी मुकेश के आवाज में आप सुन रहे थे स्वर्गीय मनोज कुमार का कहानी मैं आपको सुनाया दोस्तों। और बड़े दुख की बात है, आप सभी को मानना चाहिए कि हार्ट अकत या हार्ट कॉम्प्लिकेशन के द्वारा मनोज कुमार का मृत्यु हो गया 4 अप्रैल को 2025 में 88 साल की उम्र में। मनोज कुमार दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम फिल्म दुनिया में बड़े गर्व से लिया जाएगा।

ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। फिल्म पकीसा, ये एक फिल्म है जो निहरी तुएं सीफन तक में रिलीज हुआ। राजकुमार और साथ ही साथ मीना कुमारी, वैसे तो हकीकत में राजकुमार मीना कुमार के पाछे दीवाना था, लेकिन मीना कुमारी उन्हें नहीं चाहते थे, नहीं मांगते। फिर भी उसका पीछा राजकुमार कभी नहीं छोड़ता था। जब कहीं ये फिल्म में फिल्म तैयार होता था, जब मीना कुमारी उस फिल्म में काम किया, तो राजकुमार जाकर प्रोड्यूसर से बातचीत करते थे कि मुझे भी इस फिल्म में ले लो। तो इस तरह से भी प्यार मोहब्बत होता है। और उसी फिल्म का एक सॉन्ग है चलते चलते, एक रोमांटिक क्लासिक सॉन्ग।

का हैप्पी स्टेशन फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होतों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होत है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होत तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात करते, कोई बात नहीं, होत तो होत होते हैं। तेरे होठों के फूल जो है प्यारी प्यारी।

तेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूँगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे जोन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

होठों में ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ तेरे होठों के फूल। आप सुन रहे हैं आप ही का हैप्पी सीजन 5 रेडियो राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मज़ा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्थ का क्लोप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले, एक गीत सुना। तेरे होठों के फूल

जब दो होते हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज आते हैं, एक दूसरा आवाज भी अंदर से आते हैं दोस्तों, आपकी बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरे होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल आप सुन रहे हैं। अगर आप अगर आपका ख्वाहिश है अगर आपका ख्वाहिश है हो चुमने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

क्या ख्वाहिश है हर पल मेरे होठों पर, हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है?

के होठों को तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

0: न करो तू आईना, कहीं खुद का नजर न लग जाए, वो भी हो सकता है। सरा संभाल के ये प्यार मोहब्बत की कहानी आप अभी सुन रहे थे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए, रेडियो के जरिए।
1: करेंगे ये निश्चित नहीं है, पर मरेंगे ये निश्चित है, यही जीवन का सत्य है।

मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, जब मैं सूर्य उदय या सूर्य अस्त का जादू देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कोई भी बढ़ता हमेशा नहीं रहती है, कोई भी ना, और कोई भी रुकावट ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। मित्रों, इस हमेशा बदलती दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है मित्रों, इसीलिए समय के साथ चलें और जिंदगी के सफ़र का मजा लें। जिंदगी के सफ़र का मजा लो मित्रों। लीफ मैमसन असिक द माखीफान जोंस ओपखांग ऑफ जोंस ओंदरखांग जी बसेफिक दट हीन ऑफ कॉम्स परमानेंट इस en geen tegenslag lang duurt. Alles verandert in dit steeds veranderende universum, beste mensen. Dus blijf positief, vaar mee met de stroom van de tijd en geniet van de reis van het leven. Mitron, aur doston, सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे मजबूत हथियार धैर्य है, और सबसे अच्छी निश्चिता विश्वास है, और सबसे प्रभावी दवा हंसी के मित्रों हंसी है मित्रों। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। अर्ध मैंसन फमें द ग्रोटस्ट रैकडोम इस wijsheid. Het sterkste wapen is geduld. De beste zekerheid is geloof. En het meest effectieve medicijn is lachen. Lachen, beste mensen. Dus blijf altijd lachen. Hamesa hastere hena, hamesa hastere

भाई बहनों, विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखाई नहीं देती, लेकिन वे नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना देते हैं। उस विश्वास और यकीन को मित्रों जिंदा रखें। मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स खलूफ एंड खबैत जैन बैद ओन जिखबार मर जमाकन ओन मोहलक दिंगन मोहलक हाउ दत खलूफ en die overtuiging leven, beste mensen, en ga zo door. Sathiyon, agar tum peed nahi ban sakte, to jhaadi bano. Agar tum highway nahi ban sakte, to rasta bano. Agar tum suraj nahi ban sakte, to tara bano. Kyunki ये तुम्हारे साइज से नहीं है कि तुम जीते या हारते हो मित्रों, कि तुम जीते या हारते हो, तुम जो भी हो उसमें बेस्ट बनो, अच्छा बनो मित्रों, अच्छा बनो। लिफमेंस वेस एन स्ट्राइक अल्स ये गेन बूम कुन जैन एन अल्स ये गेन स्नेल वह कुन जैन वेस दन एन पथ अल्स ये गेन जोन kun zijn, wees dan een ster, want het is niet door je grootte dat je wint of verliest. Wees de beste in wat je ook bent en doet, lieve mensen.

भाई बहनों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं, ध्यान करिए मित्रों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं और उन्हें अपनी आत्मा में समा लेते हैं मित्रों, तो आत्मा स्वस्थ हो जाती है, खजौंत हो जाती है, मन शांत और मजबूत हो जाता है, जिससे चारों ओर अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं मित्रों, और शरीर को बहुत ताकत मिलती है, स्ट्रांग हो जाए शरीर, ताकत मिलती है लिफमेंस फमे वनीर वो खोच खनाद एन जेखन एंगन ऐत नोलखन एन ज इन ओंज जील ओपनीमन वर्त ओंज जील खजोन वर्त ओंज खेस्ट कालम एन स्टेरक wat leidt tot welwillendheid in onze omgeving en verkrijgt ons lichaam immense kracht. Wat mooi is dit toch? Wat is dit toch mooi, lieve mensen? Dus ga zo door, ga zo door. Dosten, hum sabhi mein apne aur dusron ke liye shanti, sukoon ke saath saath स्ट्रेस पैदा करने की क्षमता होती है हम सभी में, प्रॉब्लम क्लियर करने के लिए मित्रों, और ये हमारा नजरिया है जो उनमें से एक को बनाता और पोषित करता है मित्रों। ध्यान करिए हम क्या बोल रहे हैं, और लिफ मैंसन वे आलोमाल हेवन एथ फरमूक ओमजो वेलो रिस्ट स्टिल्ट अल स्ट्रेस क्रिएरन voor onszelf en voor anderen. En het is onze houding die een van beide onderhoudt en voedt. Ye hamare mein kshamta hai mitron. To burai bhi hai hamare mein aur achhai bhi hai. To in dono mein se hum kya karna chahte hain? Kaun si lege hum? Kaun wala achha rahega mitron?

0: दोस्तों, हम खुश करने की कोशिश में अपनी जिंदगी मुश्किल बना लेते हैं भाई बहनों, लेकिन अगर हम सबके साथ खुश रहने का फैसला करें तो जिंदगी सच में आसान, सुकून भरी और खुशनुमा हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है। मित्रों, आर्थ मैंसन वो माकन है उन जेल्फ मुइल दोर इधर इन तो फ्रीड इन तो विलन स्टेलन मर है लीफन वो पास एक्ट मकलक उन स्पनन एंड फ्रीड द फॉल also ervoor kiezen om met iedereen gelukkig te zijn. Wat mooi is toch dit? Wat mooi is het? Dosten, समय कभी हमारा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं रहता, तो फिर हम हमेशा सही समय का इंतजार क्यों करते हैं? ध्यान करिए मित्रों, हम समय का इंतजार क्यों करते रहते हैं कि सही समय आएगा? सही काम करने के लिए कोई समय गलत नहीं होता है और गलत काम करने के लिए कोई समय सही नहीं होता है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनने बाद में बहुत काम की चीज मैंने आपको बतलाया है। फ्रिंदन बेस्ट मैंसन द टेट वक्त नोइट ऑफ ओंस वारोम वक्त वे दन आल टेट ऑफ एट यूस द मोमेंट एर इस नोइट एन फर्केट मोमेंट ओम द यूस दिंग टू डू एन एर इस नोइट एन गुड मोमेंट ओम द फर्केट द दिंग टू डू डेंक हियर इज ओवर ना बेस्ट मैंसन डेंक हियर इज ओवर ना Want wij zitten altijd met die gekke gedachten. Ating no boom, samay tik nae, het is geen goede tijd.
1: Nee,
0: de tijd is altijd goed. Wij moeten weten wat we doen.

मित्रों, किसी को माफ करना आसान है, सहज है, लेकिन उन पर फिर से भरोसा कर पाना एक बिल्कुल अलग कहानी है मित्रों, अलग बात है, मुश्किल हो जाए। बेस्ट मैंसन ईमान फरखीफन इस मकलक मर ईमान वेर कुनन फरत्रोवन इसन हील अंदर फरहाल इसन हील अंदर तोरी। दोस्तों, ज्ञान पर व्यवहार हमेशा भारी पड़ता है। कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां ज्ञान काम नहीं करता है अनेवरों को, लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। आपके आचरण, आपके मनीरी, आपके संस्कार, वो वहाँ मायने रखता है मित्रों। बेस्ट मैंसन खदरख हिफ्त आल तेत अन फोर्स प्रों का हाथ ओपकैनस एर जैन फेल सिटिवासिस वार इन कैनस त कोर्ट्स हित मार खदरख आलस ओपलोस खदरख। भाई बहनों, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और सफर का मजा लो, जीवन का सफर का मजा लो। बेस्ट मैंसन द्रूम ख्रूत ब्लेफ पॉजिटिव वर्क हार्ड एंड खनित फन द रेस फन ये लेफन खनित फन द रेस फन ये लेफन। बेस्ट मैंसन दैट इज अ मोई ऑफ लॉसिंग। क्या सही है और क्या गलत है।

जिस प्रकार आकाश में वृक्ष जितना ही ऊंचा उठे उसकी कोई सीमा नहीं है, इसी प्रकार मनुष्य की उन्नति की भी कोई सीमा नहीं है।

चाहे साधु बनो चाहे गृहस्थ बनो, जब तक कामना मतलब कुछ पाने की इच्छा रहेगी तब तक शांति नहीं मिल सकती।

मित्रों, जो लोग कहते कुछ है और करते कुछ और है, उनसे मेरा जी घबराता, क्योंकि उनके कहने और करने का कुछ ठिकाना नहीं है।

नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों के सेवा में मैं संजय आपके साथ इस समय जुड़ गए हैं। और यही आशा लेकर कि कुछ समय आपके साथ व्यतीत करेंगे।

का तंदुरुस्ती ठीक नहीं है, भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें बहुत से बधाई दिया जाता है। इस परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है तो परिवार को बहुत से बधाई दिया जाता है। जो अपने नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं तो उनको भी फाइन दाखतु कवेंस एंड फेल वर्क प्लसीर। जो अपने तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए यानी कि अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए तो माँ सरस्वती को आपको नहीं भूलना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

जिनके हृदय श्री राम बसे, ये गीत जो मुकेश जी के आवाज में हम सब सुने और नेहतीन ससन सैफ अंतक में उन्होंने इस गीत को यानी ये भजन को गाए है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।

कि अंतर आत्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करे, क्योंकि ये अंतर आत्मा ही है जो हमारी वास्तविकता भला भांति जानते हैं।

जीवन किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती है तो उम्मीदें, भावनाएं, आशाएं और भरोसा।

का एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए और मन में यह रखे कि अगर मैं जीत गया तो प्रभु मेरे, और अगर मैं हार गया तो मैं प्रभु का।

हार जीत का संदेश कि अगर मैं हार गया तो, और अगर मैं जीत गया तो। सुनने वालों, हम एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

गलत हूँ, वह राह दिखाओ। लेकिन जहाँ मैं सही हूँ, वहाँ मेरा साथ निभाओ।

जी के अंतर्गत कहा जाता है कि अनंत प्रेम के मोती राधा, फूलों का खुशबू है राधा, नदियों का धारा है राधा, मोहन को मोह लेती है राधा।

कृष्ण प्रेम में तपती राधा, श्याम के मन में बसती राधा, वृंदावन की हस्ती राधा, महारास की जान है राधा, मिश्री से भी मीठी राधा, श्याम चंदा तो चकोरी है राधा।

वंशीवट की छाया है राधा, मुरली की हर धुन है राधा, प्रेम का हर कन कन है राधा, मोहन की मन मित है राधा। सूरज की किरणों सी राधा, आधी कृष्ण आधी राधा, गोविंद का आधार है राधा।

स्वस्ति मेहुल के आवास में हम ये सुंदर सा भजन को सुने। कहते हैं कि कण कण में कृष्ण बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी बसे, मन में बसे हनुमान। सुनवाना सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। कहना चाहूंगा कि श्रीमान खेमराज जी ने एक अच्छा संदेश को भेजे हैं। Het leven is een cirkel van geluk, verdriet, moeilijke tijden en gelukkige tijden. Als je een moeilijke tijd doormaakt, onthoud dan dat er vredige momenten zullen komen. श्रीमान खेमराज जी ने यह संदेश को भेजे, अन स्क्राइबर फिलोसोफ, जो धर्म के बारे में भी काफी लिखते पढ़ते हैं।

जय जय श्री राधे। पुराणों में राधा नाम की महिमा का बखान बहुत ही विस्तृत रूप में किया गया है। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये एक महामंत्र कहा गया है।

इस नाम का जप यदि पूर्ण भक्ति भाव से करे तो स्वयं भगवान कृष्ण भक्तों के अधीन होकर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं।

जाता है कि राधा नाम के जप से भक्त को शक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों की प्राप्ति होती है।

पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि श्री राधा रानी जी का चरणों के रज को पाने के लिए खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ललायत रहते।

सुंदर सा भजन राधा रानी के अंतर्गत काफी संदेश इस भजन में जो रखा गया गोपाल कृष्ण तिवारी के लिखे गए ये सुंदर सा भजन और अपना आवास दिए है गौरांगी अरोरा जी, नंद रानी गोपी जी और नंद किशोर निमई जी।

सच्चे शांति। सच्चे शांति वहां है जहां इच्छाओं का अंत होता है। ईश्वर जी ने ये सुंदर सा संदेश भेजे है। ईश्वर जी आपको बहुत सा धन्यवाद। और दूसरा संदेश आपका मैं जरूर रखने की कोशिश करूंगा कि मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसे मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। हमें ये सिखाया गया था बचपन में कि बोया पेड़ बबूल का तो आम के प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। ईश्वर जी के ओर से ये सुंदर सा संदेश। अगर आप ये संदेश में कुछ भी ध्यान देते हो तो जरूर आज एक ऐसा दिन बनाइए, ऐसा वृक्ष को और बोइए जिसे आपके लिए आगे में जाकर मीठा फल को प्राप्त कराए।

सुनो लो, मैं हूँ आपका सेवक संजय। और कुछ समय तक मैं आपके साथ व्यतीत रहेंगे। कुछ पुराने गाने और कुछ नए गाने के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जो दुनिया के हर एक प्रांत में इंटरनेट द्वारा आप सुन सकते हैं। हमारी हिंदुस्तानी की आवाज़

कहते भी है कि जिसका उदय होना निश्रित है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है।

आज एक ऐसा दिन बनाइए कि कोई आपकी वजह से, कोई आपकी वजह से मुस्कुराए, ऐसा दिन जिंदगी में रोज आए।

ये किनारा ही के खोज में हम सभी लगे हुए हैं। पर किनारा कैसे हम पहुंचेंगे, पहले तो हम नाव में दोनों पांव अपने रखे। क्योंकि हम सभी भगवान को पाना चाहते हो, पर पकड़े हुए अभिमान से लाचार है। और ये भी संदेश प्रदीप जी ने भेजे है उत्तम नगर से। प्रदीप जी के ये संदेश है, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है।

जी भी एक और संदेश को और भेजे हैं, जिसमें लिखा गया है कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। जैसे कहा गया है कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। हकीकत ये है कि मन को प्रसन्न रखने सब दुख दूर हो जाएगा।

आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, जिस पर सुनील जी भी ये संदेश भी हमारे लिए भेज दिया कि मुस्कुराने के वजह ना ढूंढो, मुस्कुराने के वजह ना ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी, कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी।

सुनाल, इस पर ईश्वर जी भी हमारे लिए एक संदेश भेजा। और भाई ईश्वर आपके संदेश कोशिश करेंगे रखने के लिए। संदेश जो ऐसा है कि सब कुछ जिंदगी में नहीं मिलता, कुछ चीजें मुस्कुराते हुए छोड़ देना चाहिए। ये संदेश जो ईश्वर जी हमारे लिए भेजे।

और सुनने वालों, भाई ईश्वर जी का दूसरा संदेश ये है सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है।

बिल्कुल सच कहे भाई ईश्वर ने। संदेश जो कि सत्य की भूख सबको है, हम सभी सच्चाई सुनने को इच्छा करते हैं। और भाई ईश्वर कहते हैं कि सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है।

सुनने वालों, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि बहुत जरूरी है कि जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी रखे, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है।

आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और संदेश जो ईश्वर जी के ओर से जो भारत मोहन गार्डन से जुड़े हुए और हमारे पास संदेश को भेजते रहते हैं, तो ईश्वर जी के ओर से एक और संदेश है, वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते हैं, बस सही साबित होने में वक्त लग जाते हैं।

अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। क्योंकि कहते हैं कि अच्छे इंसान अच्छे समय ला सकता है, लेकिन अच्छे समान अच्छे इंसान नहीं ला सकता है।

दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है। और ये भी आप जानते हैं कि बुद्धिमान वो नहीं होता है जो केवल बोलना जानता है, बुद्धिमान वो नहीं होता है जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे पता है कहाँ चुप रहना है।

रब ने बना दी जोड़ी। रूप कुमार की आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। कहा जाता है कि नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।

वाह, क्या सुंदर संदेश। कहते हैं कि नमक जैसे हो गई है जिंदगी, नमक जैसे हो गई है जिंदगी, अपने ही लोग हमें स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने लगे। क्या खूब संदेश भेजा भाई ईश्वर ने कि नमक जैसे हो गई है जिंदगी, अपने ही लोग हमें स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने लगे हैं।

कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी गलतियों का वकील और दूसरों के गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासला होने लगता है।

कलम कबीर सिंह ये गीत जो गाए हैं अरिजीत सिंह, उनके आवाज़ में ये सुंदर सा गीत को हम सब सुने।

गीत में कुछ संदेश भी था। ज्यादा लगाव रखना है तो अपना करियर से रखे, क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है मगर अपना करियर जो है ना आपका हमेशा साथ देता है। सुनने वाला यहां तक हमारे हिस्से के कार्यक्रम, आशा रखता हूं कि कुछ न कुछ नए गीत और कुछ पुराने गीतों के साथ कार्यक्रम को बनाया गया। सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार। मैं आपका सेवक संजय और आपसे विदा लेते हैं, और किसी ने अच्छे कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।

ओम शांति ओम से हमने श्रवण की है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से आपके लिए पेश हो रहा है। इस बार है फिल्म देवदास।

ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान की फिल्म देवदास। इस बार आपके लिए फिर एक सुंदर सा गीत चुनकर और रखी हूँ। उससे पहले तेरा नाम रहे जुबां पर, तेरा नाम रहे जुबां पर जैसे चांद रहता है आसमान पर, दिल में बसी तेरी याद की महक। ओहो, दिल में बसी तेरी याद की महक, हर सांस में तेरा नाम लिखा है, हर सांस में तेरा नाम लिखा है। तू दूर है पर इतनी करीब, तू दूर है पर इतनी करीब, हर पल तेरा ही पैगाम लिखा है। हम दिल दे चुके सनम,

चुके सनम फिल्म का नाम, इसमें स्टार कास्ट है सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, कविता कृष्णा मूर्ति जी के आवाज में साथ दे रहे थे कारसान सर घातिया। जिंदगी कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी कुछ लम्हे यादगार होते हैं, यादों में कुछ लोग खास होते हैं, यूं तो वो दूर होते हैं, यूं तो वो दूर होते हैं नजरों से, पर उनके एहसास दिल के पास होते हैं। कुछ रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, पर वो लोग बहुत खास होता है जो बिना रिश्ते के कोई रिश्ता निभाता है।

जरा तस्वीर से निकल कर तू तो सामने आ जाना, और किसी के लिए कुछ कर ना सके अच्छाई के बुराई के, हाँ बुराई छोड़ो अच्छाई करो, अगर अच्छाई ना कर पाओ तो उनके लिए दुआ प्रार्थना जरूर करना।

बस मोहब्बत हो जाता है। और मोहब्बत जो अच्छे से जो बसर करे, अच्छे से गुजार ले साथ में, तो कितना आनंद आता है ना। तो इसे समझ बूझ कर साथ में और साथ गुजारें।

ये तो बयां कर दी से कि ये भी प्यार किया है, मैं सोच रही हूँ आप भी प्यार करे हो, क्योंकि हम सब प्यार से तो उत्पन्न हुए हैं। तो सभी को प्यार के ये दिन बधाई हो, सभी के दिलों में प्यार ही बढ़ते जाए। ये सुंदर सा गीत ये कलेक्शन अलका याग्निक जी के आवाज में साथ दे रहे थे उदित नारायण और सोनू निगम जी और कुमार शानू जी।

0: है बाबूजी।
1: जय सिंह, ये आवाज किसकी है?
0: इसी गांव की लड़की है, रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर ये गाना ना गाए तो
1: शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका?
0: रूपा।
1: रूपा, जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा।

टाइटल सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम से ये टाइटल सॉन्ग आपने अभी के लिए पेश किया गया है। आपको हम एक बार फिर स्वागत कहती हूँ, आपको हार्दिक से स्वागत है आपके लिए।

आइए बाहर को हम बांट ले फिल्म तकदीर से। ये सुंदर सा गीत लता जी की आवाज में यहाँ से हम मिलकर और श्रवण की है। और इस बार आप सुनेंगे अपने खातिर जीना है और अपने खातिर मरना है फिल्म धूल का फूल से।

हाँ जी, होना है तो जो होता है, हमको क्या करना है, बस अपना जीवन ही जीना है, अपना अच्छा कार्य करना है, ताकि हमें आगे अच्छे अच्छे यादें भी बनाना है। इस बार कविता कृष्णमूर्ति जी से हम सुनेंगे आँखों के गुस्ताखियाँ।

0: कविता कृष्णमूर्ति जी से हमने ये सुने हैं। एक बार फिर कृष्णमूर्ति जी की आवाज में ऐ दिल लाया है बहार। जी हाँ, लाए है बहार।
1: ओ प्रिया,
2: पापा,

सुंदर इंस्ट्रूमेंटल वीर जरा के आपके लिए भी यहाँ से नशर किया जाता है। और इस बार आपके लिए सेलेक्ट करके रखी हूँ सुनिधि चौहान जी की आवाज़ में।

क्रेजी किया रे या महात्मा है क्या, सुनिधि चौहान जी की आवाज में क्रेजी किया रे, फिल्म धुन नंबर 2 से क्रेजी किया रे। उसी फिल्म धूम से हम निकालेंगे अभी फिर से एक बार सुनिधि चौहान जी की आवाज़ में, पर

जाए तो प्यार हो जाएगा। डोंट लुक मी लाइक दैट मोर, वरना प्यार हो जाएगा। सुनिए दी चौहान जी की आवाज में। ब्लेव इन ये सेल्फ गलोफन, ब्लेव इन ये सेल्फ गलोफन, लाट ये सेल्फ नोइट इन द स्टेक, अंदर्स कोम ये एर सेल्फ नित मेर उइट। एर इस मार एन जय, एन दार मुझे ट्रोट्स अप सेन।

न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाउन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी अदाब, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी

तो यहां से हम तुरंत बढ़ते हैं अपना देश और विदेश के समाचार की ओर। तो हमारे जनता, हमारे सूरीनाम की जनता, नीदरलैंड की जनता, आपको हम बता देते हैं फिर से सूरीनाम हम फिर चलते हैं। और आप लोग जानो हैं फेहा पे की ओर हम जाई है, फेहा पे हार गए रहा पर की सिंह, तो एनडीपी पर की सिंह जीत गए हैं। तो एक बारे में अब भी फेहा पे में बड़ा जुगु जुगु होवे भैया। तो जोगी यहाँ पे बोले रहा, बोले रामदीन के चाहत रहा फोरख रखेरिंग में, जोन रामादीन के ना रामदीन भैया, रामादीन जो रहा वो रहा मिनिस्टर फन फॉलोस हसन हैद के, बोले ओके चाहत रहा ऑन स्लाख दे देवे के, बोले ओकर कारण बोले हम लोग फिर यहाँ पे बोले आज हम लोग हार गई ली है। तो एक बारे में आउट मिनिस्टर फॉलोस हसन हैद के अमर रामादीन बोले हैगा फेथ है बस्ती लोग ऑन बहुरलक कि ओकर पार्टी खनोड महेंद्र जोगी बोले है ने बोले आनखी फकरी से गा कि मिनिस्टर वा बहुत स्लेख प्रेस तासी ले फकरी से, और बोले ओकर बारे में सन ने फे हापे बीते हुए फरकी सिंह में बोले हार गए है। और बताई से गा ने बोले हम ने जोगी बोले संतोखी से बोले रहा कि रामादीन के तू बोले फरफंग कर दे, और बोले है पुराना मिनिस्टर जो आउट मिनिस्टर स्लाद तखलाई कर हारते हैं जोगी के कि पार्लियामेंटारी हम तेज जफोर रखेरिंग बोले रहा सर मक्का में बोले जो घरवा है जोगी के बोले हीर कर दे, बोले एचएफएस के स्टासी के फोन के जो पैसवा हमें भीतर आवे है। तो अब बतिए न सब फूटे भैया कि इस सब कौनची कौनची मांगत रहा करे। तो रामादीन बोले है बोले है गा जोगी बोलत रहा अपन घरवा बोले लांठी के हीर कर दे एचएफएस के, बोले कि माँ बोले कि हम ही चीज हुआ ना मंगली बाटी बोले खेप है तुन बस प्रोकन, बोले ऐतर रात बोले हिल खफुलख रहा बोले ऐत ब्राइडन बोले प्रेसिडेंट नादा द प्रेसिडेंट जो संतोखी बोले है waren de letterlijke woorden van de president voorzichtig stap niet in de wereld van meneer Jogi, omdat hij jou ernstige problemen kan geven. Hou ook rekening met de regering en de partij. De ik Ramadien ke waarschuwkeler ha, en hij is een maand doorstu, aangezien de VHP tot nu toe geen evaluatie met gewezen minister heeft gehouden. Met mij is er zeker geen evaluatie geweest waaruit geconcludeerd zou zijn dat ik als minister slecht zou hebben gepresteerd. Jogi vindt dat drie ministers

साहिद भैया सूरीनाम में पिस्तौल वाला बहुत ज्यादा हो गए भाई, और मिस ब्रेक भी करे हमारी जनता, मिस ब्रेक करे इससे इनकी सबके ये पिस्तौल है तो सोचे हमसे बड़का कोई न बिशी पीर के बारे में सुन ले हो। तो अब देखो एगो बोंस खबाऊ है, एगो बोंस खबाऊ है, और ये बोंस खबाऊ कहाँ है? ये बोंस खबाऊ है भैया ओ का नाम बा ओ वी ओ एस बोंस खबाऊ हुआ पे फरमुदलक भैया बोंस खबाऊआ में रोफ भैल है दोन दाख के रात के वेरक नहीं मच और खानी सासी जो श्री नाम कहेगा फान ओखम ओखम वेरक नहीं मच और खानी सासी श्री नाम के जो द्रम वारांद्र श्रख्त में है परमारिबो में हुआ पे एक अदमी चोटाई गए है भैया यहाँ बतावे गए है का बस्तूर फर किसिंग रहा ओ वी ओ एस में जहाँ पे फक और खानी सासी है का एनर्जी बद्राइव श्री नाम के 11 तारीख सितंबर के बातचीत है और बोले एरिस फोरास नो खेन फरमान बकेंट से स्किट इंसिडेंट एंड फर किसिंग अब जाने बॉन्ड की फरकीसिंग के बारे में एक मेला चुटाई गए हुआ दागी से हमारी जनता तो ये बात है गा बाकी तो के लगे हम जाए ला भैया भूपा चल गए है लांटी में काम करे कर मुंह बहुत कमती खोले है जाने हरदम बोले एने श्री नाम एट एंड दान रेस अब पाकी तो भैया एकदम मुंह में उकर पलाक बांध लग गए यास दास पहिर के चले है अब जाए के यहाँ मुंह कोली से भैया पाकी तो बोले है तुलन जाने एबीएस बोली से गा जो हुआ के एबीएस गा अन लियो ब्रिंसवेग डायरेक्टर है बोले लांटी जो ने दे ना बोले बहुत अख्तर स्थान है गा हम लोग के पैसा भरे के लांटी पैसे ना भरे बहुत ढेर कर्जा है लांटी दे ना खबाऊ के बारे में बोले पैसवा हमार कब भरिए मतलब के हम लोग के एबीएस के बारे में तो एक बारे में पक्की तो गए है मुंह खोले जाने का बोले है नानी एंड पे स्टेफानो पक्की तो बीर फेल बोले रे आखिर करी से बोले ऑफ द डिस्क्यूशन अश्विन अधीन और लियो ब्रेंसिक ओवर द इलेक्ट्रिसिटी रीगनिंग फंड दे है ना बोले द टॉप मान फन ईबीएस से इन द इंटरव्यू बोले क्रिटिक बोले से दे ना के पार्लियामेंटारियंस के बोले मिसमैनेजमेंट हैगा एनर्जी बेदरिव इस मुद्दा खान के देना से एकन बतालिंस फरप्लेक्टिंग टीकन ऊपर दे एबीएस ना कोम और बोले है क्या देना मिर्द्र खबावन है एन ख़रोट आंताल इकोसिस्टीम बां terwijl sprake zou zijn van achterstallige betaling van de EBS adhin sprak dit tegen aur kaam bole ik er bare pakketo bole he pakketo bole he het geweldig te vinden dat Brunswick zijn uitspraak heeft gedaan en dat hij juist van de leiding van het parlement had verwacht dat dit gedocumenteerd met bewijzen de beweringen van de EBS topman zou tegenspreken तो बतावे हैं पक्की तो अब जाए के पक्की तो मुंह खोली से भैया बोले ब्रिंसवाइक के लियो ब्रिंसवाइक के लेती अब देखो निकेरी की ओर जाए खेतिहर लोन के भैया पैसा ना मिलल है पैसा ना मिलल है अब एकर बारे में देना देना ले जो है रघुनंदन एकर बारे में रखे रिंग से बोले गो स्पूत ऑन सुख करवाओ हमार खेतिहर के बोले अब पैसा ना रहेगे फोलखंद सही सुन में धान चीटे के बोले हैगा पैसा उस अपना पावे हैगा अख्तरस्ताल के बोले उस सबके चाहे तेल कीने के मशीन से आरबेस क्रख्तन कम करतन के भरे के और बोले वनेर फोलखंस फॉर फोलखंस यारन लंग बरीसन से बोले लीफर करिस इस सब धान बोले कान लंग बोर फोलखंस हैं फिनेंशियल फॉर लीड क्लेम को मंत जेतन सब के ना बके ढेर पैसा ना पाइसे बोले लीफरांसीस बंकन एंड अंडर स्कूल एसन मुदत इमर्स नेचुरली बताल्ड फॉर द मींस और इसे पैसे ना पावे है हे विल यूज दैट फॉर गेकन नाद गेफालन वार एर अख्तरस्तांद से मेरदर सीजनन हैवन अपगेस्टापल कितरा दिन से उसे पैसा ना पावे है रघुनंदन बोले है द वर्ड ऑन द सोख ऑफ बट्रोकन वर्क एन वर्कर सिख ऑन द गेल्डेंड वेट रेगल गिवंस होल्डन योर फॉर वर्क कर धनवा उसे पैसा ना दी से वने सो ब्लेकन द ऑंडरनेमिंग स्ट्रक्चरल हुन फॉर प्लिक्टिंग नीड ना कॉमन मेंशन तो
हमारा खेतियर निकेरी के चाउर के बारे में हिया बताए गए भैया नहीं दलंत के दुआन का पकड़ी से नानी बारा हाट लगे बोले मैं बतावे के पड़े है भैया पिंडा में क्रैक इन पिंडास ऐश्वरी नाम दुआनो मा का पाई से नानी कौन ची पाई से भैया नीदरलैंड से दुआन क्रैक आंखत्रोफन इन पिंडा क्रैक भाई अन वोट फुल द बफेस्ट इकर बारे में अब बोले है का अन द फोंस वर्ड में द वोट स्पेलिंग बकेन खमाक दुआनी सोलन तेजस कंट्रोल हील verslavend de pindas hebben aangetroffen. De drugs waren volgens de mededeling creatief verborgen, maar vormden voor de medewerker geen lastige zaak om te krakken. De aangetroffen drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Ja, en hier betaal ik nakali krak met pawe, kukahi met pawe, karabu met pawe, palem met pawe, jurmachiri met pawe, foroktu met pawe, kerstbrood met pawe, aanzien वाला सिर खोत में पावे खुद में पावे नरियर में पावे पिंडा सांबल में पॉपकॉर्न में झूर मछरी में बाप रे बाप और कहां बोले हैं बीते हुए दिनों में इस पाई से भैया बंबू में फ्लैश डेट में बलादर में पत्ता में पाइस भैया ढोलक हारमोनिया में पाइसे वीरोग में पाइसे भाई का होए भाई धनी होए खांती नदमी इतना जबर है दुरुक्स के बारे में हिया से हुआ पठावे हे नीदरलैंड भाई अब देखो एगो बवाकर द्रियन फेफ तक यार के सुरीनाम देश में पकड़े रहा पकड़ान है ना बवाकरवा चोर के पकड़ी से सिपाही बवाकरवा के पकड़ी से भैया एगो सेशन देर तक यार के औरत के इब फैले के आदमी फरकराख कर ले रहा verdenking voor verkrachting van een 36-jarige vrouw en ik heb het aanwezigd hier de meer aan Bawakara Centrale Hoofdstembureau van de Friedrich Derby Straat Suriname ke, jahan pe kabole hega stembureau hai centrale hua pe Bawakara 5 tarik september be bhaiya apan kaam pe bole hega voorgenaan op de werkplek we pe bhai de vrouw deed aan heeft obole onderzoek in kader van een onderzoek werd de bewaker natuurlijk aangehouden. Te kamuwe pe bhaiya jahan pe oke chahi bewaker ke huwe pe jai ke aur farkrakh kar de bhaiya ye baat hai jhamara Suriname ke jo shikari lone bhaiya jab dekho tarikyo social media pe banduk leke ja hai jangal mein ee dange u dage hai sport kare admi lone yani apan fasi sab koi khanit करे है लेकिन फोर्स एक तक रही भैया तपाना होनी में

गोदो गोदो होलो भैया गोदो ओलो बोफन तपाना तपाना होनी खबीत में बा तब भैया शिकारी लोन गए लहा पिंगो दागे अपरे में दगा उवल कल्ली से भाई पिंगो के झटका में हिया बतावे हेगा गए लहा पिंगो दागे भैया और ओही करमिया ओके दाग के मार ढाड़ी सोजे पिंगो दगली भाई द त्वे वारन है बॉस्किन खखान ओम पिंगोस ते याखन तेदन ने याख schoot in van hen met een jachtgeweer aan de jachtgeweer de ander raakte ook in legal hey op over de precieze toedracht en de identiteit van de slachtoffer zijn nog niet de pingo ke jhatka me apan mede jachtgeweer ke daak ke aur maadhari se dosto i bari dukh ke baad bari jabar aise lemua phino bhaiya fartrak kare legal janta bahut dukh me bhai je un jon janta और पीवाई नीख नीख फिर एसएलएम पे उड़ल और सबके बड़ी दुख फेसबुक पे भी आदमी बोले हैगा बोले हमने से एसएलएम कम्युनिकेशन ना करे है तो बोले एक घंटा बाद उड़ी तो दो घंटा बाद तो ये तो कब उड़ी तो फिर उड़बे ना करे है बोले वैसे ही लमान साथ में एसएलएम से एसएलएम फ्लिक जो ना पीवाई नीख नीख फिर आमस्टरडम आवत ही लमाल का बोले अनुलेर हो गए है और बोले नहीं सितंबर के बोले टेक्नी से प्रॉब्लम है बोले पाशा सीस वारन आल इंच चेक फॉर फ्रेक 8 बजे इसे बोले उड़त भैया तू स्टेल एयरबस A340 तक जोन बा स्काई केयर के बोले हैगा बुधवार के आमस्टरडम आवर फॉलोज हैड गेडिल्ड फ्लुक्ट ओवर सिक लैंडेड द फ्लुक्टिंग आल्स फ्लुक्ट in Paramaribo in de avond zou het weer naar Nederland vertrekken. In Tsjechreizigers waren nog niet aan boord. Op het plein mee naar Baitala. Maar in Tsjechkertjokala. Wat er precies met het vliegtuig aan de hand is. En hoeveel tijd nodig is om het probleem te verhelpen. Is niet bekendgemaakt mensen. Ook is er ook geen nieuwe vertrekmoment aangekondigd. Door Surinaamse vliegmaatschappij. De Admiloon Bhaiya Apanjoon Jurma Chiriyo Chiri Leke Jatra. तो झूर रहेगे मैं जो आदमी फ्रीसर ईसर के चीज लेके जात रहा उस सब आदमी के चाहिए फिर लौट के आवे के भैया एगो तीनर भाई सुरीनाम देश में खेलत रहा स्पेल टाइम लगे रहा एक चार मर्दाना ओके बरूफ करी से भैया एगो तीनर के ब्रोम फिश से बरूफ करी सेगा तीनर के और बोले एगो स्पेल टाइम रहा लीली दरप वेख में सुरीनाम में और बोले हैगा ओके प्रोफेसर ने सुरीनाम ब्रोफ फॉर हिम ब्रोफिस को ब्रोफिस व चरा ले गए है और बोले 1700 ऐसा दी लंडवा के पास रहा वो लेके चल गए है तीनरवा भैया वार में दे स्पील ते आने ऑन स्पॉट टू द फरदाक्टन ऑफ टू ब्रोफिस को आमन आनराइडन Op de volgende slachtoffer waren de mannen niet gemaskerd en droeg geen van hem een vuurwapen. Een van de slachtoffers, een 16-jarige jongen, verklaarde tegenover de politie. Kies op een lundwakke bedrijf, karissen zijn tras zou leken, brom leken bhagge, lili dorp kisipahi, onderzoekere al leken geile brandsoep weg met ghusel. Hamari janta, je baantjeet hem. अब देखो भैया हु खाद के तुलन जानो भैया अरे भैया बड़का एनडीपी रहा एक दे सोशल मीडिया पे गिर गया रहा और सब कोई एक नाम धरी से मने दरा से था ढेर आदमी के ऐसे बोले है बैतलांदेश के बकड़ा बाची ही करे अब देखो हु खाद बारह दिन से कुछ ना सुना रहा अब हु खाद के भी अब मुआ कुलले बोले दे मांग नो सब तक वे पीना बोले आदमी न जाने है कि हम लोग पीना करी लगा लूज फॉर हुकिंग 50% जो मा लंस दिनान तू तो कहने बतीकन फॉल्कन्स रोनाल्ड हुखार जो फक बोंस ले इधर है बोले हैगा दैट मैन नीड नॉट रेड फॉर अ केक है स्टिल सिक आफ्टर फ्रागन ऑफ द रेगिंग नीड वेट द लंस दिनान पीनारन इन हेड लंग भैया मत तो हूं तो बड़का एनडीपी बाटे और तो हूं तो बाटे रेगिंग के बड़कवा और अपने आप के बोलिए सा एप सा इना
समुद्रे दे मांगनु साबित ताकवे पिनावन अपि दे नामे ना बैठल भैया ता बहरे सब जरूर अप चिरैया गाना गाई दन कैक निमान निन्नार एट फॉलर से कैक नार वत से विलन दून दुस वत एर मेट ओंस गबेर द पॉलिटिक हीव दा निस मे ते माकन अल्स मा सिक सेल्फ रेकन से होगार्ड बोलिसे और ओही के पार्टी के एडमिट आज बैठल है अब देख ओही के बोले हैगा कावल होगार्ड ई औत पुरा पुराना एनडीपीर पार्लियामेंटारियर रहा हुएल प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन आनगीव दैट इन मोमेंटेल geen financiële ruimte is om een hogere loonsverhoging dan 15% toe te kennen voor de landsmensen, landsdienaren. Teye bole una de ke hem lo ke tra pina karela bole ino man lekwans ma di no abi yang uit tak ano mus yang. Dus ik scheld de president niet uit, want ze heeft rommel overgenomen. Dus ze doet haar best al, dus een vakbondsleider. Jane gatai kaart ke tel laga de ki na pirato. Apo ke na deze santo ke ke deze bole tu rommel overlele. Ma jonsa me pe fi ha pe eke overlera tak kontje ra bhaiya khali su. Nou, overleraar, kabel, ja. Tot de regering en vakbeweging zijn overeengekomen om een gemengde werkgroep in te stellen bestaande uit 8 vertegenwoordigers. Kebaren mee. Toch, maar janta, hooghaard, kebaan, Chitra, Suriname, ke. Baren mee, de kopaya, jailago, supermarkt, Suriname, mee. 4 आदमी अपन मुंह तोप के भैया मास्कर पहन के घुसल है वेस्टर्न फन सुरीनाम और बोले एगो वाख्तर के पकड़ के रात के सोमवार के और मंगल के रात के 4 गो मास्कर पहन के ओवर मेस्टर करके हाथ गोड़ बांध के सुताए रहा भाई और जाए के दुकानिया में वो उनिंग एंड सुपरमार्केट इन पान में जाए के घुस गए है द पुलिस तरफ द वाख्तर लातर फास्ट कबोन ऑन द अख्तर कौन में उके बांध दे रहा 4 बजे सवेरे के बात है और बोलेगा तुम सुपर मार्क ऐखना शोंग से बे पुलिस ब्यूरो निकेरी मेल तो निकेरी के बात है फरक्लार करे के वक्त रूम में हेल्प हात हो रहे रूपन ने फरमुदा दैट इट इज अर्नस्टिक ऑन द हैंड वाज फॉलो द फरक्लारिंग फ्रॉम द वक्तर हैडन द फियर मैन एंड हिम एक बजे रात के फरस करिस ओवर मिस्टर करिस से फोर्सेरे दाना राम एंड ड्रोंगन फिया द ऑनस्टैंड ओपनिंग द वोनिंग बिनन ऑफ सुक नाट द वर्डफुल स्पिलन Op het eigen supermarkt wordt gebruikt, werd doorzocht de eigenaar en zijn gezin bevinden zich momenteel allemaal in Paramaribo. Bolle, het is vooralsnog onbekend wat de daders hebben meegenomen. Op de Nikeri rivier naar het pand en verlieten ze zijn locatie naar dezelfde route Suriname. Toe je maat hebben ja, wacht er weken pakkerke banker deze ga, je maat heb deko. मिला के पकड़े से कश्मीर स्ट्रांत में इन फल फन वोनिंग यहाँ बताई गई है क्यूबा के औरत है और एगो एडमिशन नाम के 8 तारीख सितंबर के आनखाउद कैसे का कश्मीर स्ट्रांत परमारीबो में बोले द एक्सी वेट एट को फोर द मीडिया वर्कर सिपाही के टेप पायरा ऑन द स्टेनिंग फन एन रीग्यू एन रीग्यू बेस्टान टीम परमारीबो के बतावेगा फरमुदलग slachtoffer van is een mensenhandel kertraan. Een mensensmokkel kertraan. Tijdens de inval werden meerdere slachtoffers aangetroffen. Zij zijn voor opvang en verdere begeleiding overgebracht naar de shelter van de afdeling. Tipje waren met ons tot ijsje wat ja hij hem zo chitelijk en hem ego or giet sunai die toe vier hem aan jaenge or wo konsi giet he hemari jari jaro hemari janta daar opieke dans ke waren met

En dat was een shuka shuka shuka chitri zong. और दोस्तों और आगे को हम चलते हैं बढ़ाते हैं अपना जोंग को and only the hot one by radio by radio for horn

हॉट वन सॉन्ग हम चलाते हैं, आप लोग जरूर सुनना। तो हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर।

0: और क्या हुआ तेरा वादा नहीं कती सी वत काले की रही बैंक सॉन्ग जो प्रबत पंचू ने गाकर आपको सुना दिया है। और अगला गीत है बॉलीवुड पार्टी सॉन्ग।
1: हाय हाय हाय हाय हाय

और zonari, only hot by Radio Vahon Bollywood Song.

और आगे भी यही शोर, पीछे भी, पीछे पीछे यही शोर होता है, और इस पूरी दुनिया में शोर है द बेस्ट रेडियो स्टेशन ऑन द वर्ल्ड एंड दैट इज रेडियो वाहन और द

पूरे अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और सोनू निगम अलकायंगनी का ये प्यार भरी लवली सॉन्ग के बाद हम चलते हैं उदित नारायण जिस बहुत खूबी से इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए ये क्या है।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी, रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी का नाम है झनकान फन नई खतक और बलमा नई खत नई खतक का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो।

0: क्या करो एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा।

तेरा नाम में बसी है खुदा। दोस्तों दोस्तों दोस्तों दोस्तों लवली सॉन्ग बजाना हमारा काम है, हमारा काम है लवली सॉन्ग बजाना।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी, रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी का नाम है झनकान फन नई खतक और बलमा नई खत नई खतक का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो, दिल लगी ना किया करो।

0: क्या करो एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं

फूल को भी तुझको, रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निकट इंद्रिय से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल, नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और 1959 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

तो करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। ओ और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर, ऑल इज गोल्ड फॉर

हट जाओ और दीवाने आए, और कौन सा दीवाना आएंगे, हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। और सुना जाए माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: और ऐसा ठुमक के मत चलो, ऐसा ठुमक के मत चलो कि आपको ठुमका लग जाए। तो ये गीत बहुत यानी कि मशहूर है दोस्तों, और ये है दिल तेरा दीवाना।
1: नजर बचा

और तस्वीर से भी और निकर के सामने आ, और कौन आएंगे, महबूबा ही आएंगे हमारे यारो। तो प्यार भरी सॉन्ग है, क्या दिल ने कहा है।

दिल ने कहा आओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों तेरे नाम लिया और क्या किया क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया सुना जाए।

तो पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे। तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है? तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और किस उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन नेखंतींद्रियन तख्तकां। ये फिल्म है दोस्तों और ये मूवी है। इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है किशोर दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सूरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं आओ सुना जाए।

का ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है सौतन दोस्तों, सौतनिया सौतन मोफी के नाम है। इसके बाद हम और आगे को चलते हैं, रोमांटिक सॉन्ग, एक और रोमांटिक सॉन्ग हो जाए आज अलका का, अलका याग्निक और द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार कुमार शानू की ओर हम चलते हैं। कौन सा सॉन्ग है दोस्तों, कौन सा सॉन्ग है? नवीन सरवन का म्यूजिक है।

ये दिल आशियाना, और उसके बाद हम चलते हैं, कभी कभी लोग को पूछना पड़ता है और कहते हैं एक बैर खैन अख्तिनवेर, लोग बोलते हैं एक बैर खैन अख्तिनवेर, और एकवा बोले है एक वोर्थ अख्तिन। तो ये गीत 18 बरिस से के उम्र का गीत है दोस्तों, एक सुपरहिट फिल्म सुहाग का है, जो नई खती हों नई हनन जी फन तख में, और ये मूवी हलचल मचाए थे।

के उम्र हो गया है तो कोई जतन करना चाहिए। और जतन के बाद हम चलते हैं, क्या आपकी जो आंखें है वो भी काली है, काली है या गोरी है या ब्लू है या लाल है, ये सवाल हम नहीं करता है, करते हैं लवाजी कर करते हैं।

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahun Hindustani Radio.

लता जी आपको सुनाए अगर तुझको मोहब्बत है फिल्म आपकी परछाइयां में से है नेक दिन फिर से शस्त्र का जी यानी कि फिर शस्त्र का ये गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, एक फिल्म है, फिल्म शायद आपने देखे होंगे, बहुत पुरानी फिल्म है, ये गीत है गाया गया है गीता राव जी के जरिए और मन्ना दे जी के जरिए। ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है, स्वार्थवेद फिल्म है, शायद आपने देखे होंगे, नाम है जग्गा डाकू, जिसमें जयराज ने खेले हैं, एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया लेकिन सिर्फ जयराज याद है। तो जब मैं बहुत छोटा था ये फिल्म देखे इसलिए सिर्फ जयराज याद है, एक्ट्रेस नाम नहीं है, क्योंकि जयराज तलवारबाजी में बहुत तेज था उन दिनों। तो लीजिए वही गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, फिल्म जग्गा डाकू में से निकाल कर हम आपको सुनाएं गीता जी और मन्ना दे जी की आवाज़ में, जबकि आप सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर। ये गीत बहुत बार चला लेकिन ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है, तो अगर जब मैं कहूँगा फिल्म अनपढ़ तो आपको पता चल गया होगा, लता जी भी आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल ही गया है तो चलो सुनते हैं।

आपकी नजरों ने समझा मदन मोहन। जी हाँ, मदन मोहन के साथ पर फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर नेकेतनीस 1962 का ये गीत लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम रखने वाले हैं और ये है भी एक बार लता जी, फिल्म गुलामी तो आपने देखे होंगे। जी हाँ, फिल्म गुलामी में से निकाल कर ये चलता क्यों नहीं भाई? अच्छा, अगर वो नहीं चलता तो ये तो ज़रूर चलेगा।

वाह क्या दिव्य था रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में फिल्म कश्मीर के कलमे से निकाल कर हमने पेश की ओपेन नैयर के साज पर। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, रफ़ी साहब ये कह रहा है कि अगर वो आता है तो सिर्फ वक्त बिताने के लिए, अमायकों की रतिंग। तो चलो सुनते हैं क्या ख्याल है रफ़ी साहब के और आशा जी की आवाज़ में फिल्म नीला आकाश में से निकाल कर 1965 का ये गीत, निगेटिव फैंसस का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा गीत है, सुन लीजिएगा।

हर पल की शुरुआत मधुर वाणी के साथ। मैं हूँ सेविका शांता। स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम। तो यहाँ से पेश किया जाता है गणेश जी की सुंदर सुंदर भजन आपके लिए। रूप बड़ा निराला है, रूप बड़ा निराला गणपति मेरा बड़ा प्यारा, रूप बड़ा निराला गणपति मेरा बड़ा प्यारा। दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा, ये गणपति जी का वरदान है। देव का देव वक्रतुंड महाकाया को अपने हर भक्त से प्यार है।

अवश्य अवश्य पहला ध्यान श्री गणेश का। आप कुछ भी आरंभ करो, पहले श्री गणेश, पहले श्री गणेश, फिर आगे जितने कार्य आप करने को जाएगा सभी अपने आप सफलता सिद्ध होते ही जाएगा। पग फूल खिले, पग फूल खिले, हर खुशी मिले, यही है गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। सब कुछ सब शुभ कारज में पहला पूजा तेरी, सब शुभ कारज में पहले पूजा तेरी। अरज सुन मेरी, हे मेरे बप्पा, अरज सुन मेरी, रिद्धि सिद्धि को लेकर करो भवन में फेरी। रिद्धि सिद्धि के लेकर करो भवन में फेरी, करो ऐसा करो ऐसी कृपा, नित करूँ मैं पूजा तेरी। गणेश जी के 108 नाम जरूर से सुने।

गन गन ओम गन गणेशाय नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अस्त विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मौर्या वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।

हरे जय हो गणेश। हम सबकी मनोकामना है, छुप छुप मनोकामना है, वो जरूर से हमारा गणेश बप्पा पूर्ण करें।

खुशियों का जन्म जन्म, खुशियों का जन्म जन्म का साथ हो, खुशियों का जन्म जन्म का साथ हो, तरक्की की हर किसी की जुबां पर बात हो, गणेश जी हमेशा हमेशा साथ हो, भगवान श्री गणेश जी की कृपा बनी रहे हरदम, भगवान श्री गणेश जी की कृपा बनी रहे हरदम, हर शुभ कार्य में सफलता मिले, हर शुभ कार्य में सफलता मिले, गणेश चतुर्थी की हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है।

जीवन के रास्ते हजार, जीवन के रास्ते हजार, बस उसमें सोच समझ कर और आगे ही बढ़ना है। सुख मिले, समृद्धि मिले, मिले खुशी अपार, सुख मिले, समृद्धि मिले, मिले खुशी अपार, हम सभी को जीवन सफल हो, जीवन सफल हो, जब आए गणेश जी आपके हम सभी की द्वार, हम उसे पुकार करें वो आएगी हमारे जीवन सफल बनाने को। द फ्राक इज वट सिम्बोलिसेड हेयर गणेशा, गणेशा द हिंदुस्तिस ओलिफांत खाउत, गणेश भगवान सिम्बोलिसेड बस्केरमिंग एंड हेट फरवेदरन फन ऑब्स्टाकल्स ऑफ ईमान्स पथ। Hij is een van de populairste godheden in de hele hindoeïsme. Zijn olifantenslagtand symboliseert intellectuele kracht, aanpassingsvermogen en efficiëntie.

गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी जो हम बड़े समारोह के साथ मना रहे हैं। गणेश चतुर्थी इज द फरियादा फन गणेशा। द गोल्डन सोन, द गोल्डन सोन मेट एन ओलिफांते होफ। हे इज द गॉड फन द वैसेट वेलफार्ट एन गेलुक, मार ओक द बस्केर्मिंग, मार ओक द बस्केर्मिंग गॉड फॉर alle reizigers.

हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहे हरदम, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहे हरदम। हर शुभ कार्य में सफलता मिले, गणेश चतुर्थी की हार्दिक से शुभकामनाएं आप सभी को। सुख मिले, समृद्धि मिले, मिले खुशी अपार, जीवन सफल हो जब आए गणेश जी की द्वार, जब आए गणेश जी द्वार। जीवन जीवन सुंदर सुखद बन जाता है जब कोई गणेश जी का हो ही जाता है। जीवन सुंदर सुखद बन जाता है जब कोई गणेश जी का हो जाता है। भक्ति गणपति, शक्ति गणपति, सिद्धि गणपति, लक्ष्मी गणपति, महागणपति, देवों में श्रेष्ठ मेरा गणपति, हार्दिक से बधाई हो आपको गणेश चतुर्थी के।

संगीत में गाकर सुना दे कि जब से हो गए हैं यंग, हाँ आप जवान हो जाएंगे तो जरूर से ऐसा ऐसा दर्द दिल में समाएगा। और कहता है कि अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। अगर इसे आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आप जरूर ये मानेंगे कि बात सही है।

हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल फिल्म का नाम है मेरे प्यारे सुनने वालों। हाय मेरा दिल फिल्म का नाम 1968 के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। 1968 कितने बीते हुए समय लग रहा ना, और वाकई में समय बहुत जल्दी से बीत रहा है। कहते हैं कि गिरने के बाद उठना ही असली जीत है मेरे प्यारे सुनने वालों। हार से डरने वाले लोग कभी जीत का स्वाद नहीं रखते।

0: दोस्तों, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलती है, पुरुषों की आत्मा किस छिद्र से निकलती है और स्त्री की आत्मा किस छिद्र से निकलती है, पापी और पुण्यवान व्यक्तियों की आत्मा किन किन छिद्रों से बाहर निकलती है, इस विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इन पापी आत्माओं को अगला जन्म कौन सा मिलता है, इसका भी वर्णन भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथ हमें बड़े रोचक लेकिन गंभीर अंदाज में समझाते हैं कि आत्मा कैसी होती है, शरीर में कहाँ रहती है, मृत्यु के वक्त क्या होता है, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और पाप पुण्य के हिसाब से आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। तो चलिए आपको गरुड़ पुराण का संपूर्ण ज्ञान विस्तार से समझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूले और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे। आत्मा शरीर में कहाँ और कैसी होती है? शास्त्रों के अनुसार आत्मा हर जीव के हृदय में एक सूक्ष्म रूप में निवास करती है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, चेतना का वो दिव्य कण जो हमारे पूरे शरीर को जीवन देता है। शरीर तो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना नाशवान पदार्थ है, लेकिन आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा का कोई रूप रंग नहीं, पर इसे एक चमकते हुए छोटे प्रकाश की तरह समझ सकते हैं। गरुड़ पुराण में तो कहा गया है कि यमदूत जब आत्मा को निकालते हैं तब वो अंगूठे के आकार की सूक्ष्म पुरुषाकृति होती है, यानी आत्मा इंसान के सूक्ष्म शरीर के रूप में होती है। बिल्कुल मानो आपके शरीर का नन्हा प्रतिरूप जो अंगूठे जितना छोटा होता है और जिसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही आत्मा हमारे होने का वास्तविक मैं है, जो न कभी मरती है न जलती है, बस एक शरीर से निकलकर फिर अगले गंतव्य की ओर चली जाती है। दोस्तों, मृत्यु के समय क्या होता है? जब किसी स्त्री की मृत्यु का समय आता है तो शरीर में कई बदलाव शुरू हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जैसे जैसे अंत निकट आता है उसके जीवन दायु प्राण डगमगाने लगते हैं, सांस उखड़ने लगती है, खांसी और बलगम से नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं और आंखें उलड़ने लगती हैं, शरीर बिल्कुल निर्जीव सा निश्चेष्ट होने लगता है, मानो आत्मा की पकड़ ढीली पड़ रही हो। कई बार मरने वाले की जीभ से झाग निकलने लगता है, मुंह लार से भर जाता है और वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। गरुड़ पुराण भयावह तुलना करता है कि प्राण निकलते समय मनुष्य को ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। सोचिए जरा कितनी तीव्र पीड़ा। मृत्यु का क्षण इतना यातनामय होता है कि वो एक पल नहीं बल्कि युगों के बराबर लंबा महसूस होने लगता है। कई पापी आत्माएं तो असह्य डर और दर्द से अपने मल मूत्र तक छोड़ देती हैं। शास्त्र कहते हैं ये सब पिछले कर्मों के कारण है। जिसने जीवन भर अधर्म और पाप किए हों उसके लिए मौत का स्वाद बहुत कड़वा और भयावह होता है, लेकिन जिसने धर्म पूर्वक जीवन जिया हो उसकी मृत्यु अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से हो सकती है। पापी के प्राण हरने कौन आता है? गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि अंतिम क्षणों में सिर्फ मरने वाली को एक दिव्य दृश्य दिखता है। आसपास रोते परिवारजन दिखाई दे सकते हैं, पर साथ ही यमराज के दूतों का आगमन भी होने लगता है। ये यमदूत बड़े भयंकर रूप वाले होते हैं, काले डरावने चेहरे, सिर पर खड़े रोंगटे, लाल जलती आंखें, हाथों में फंदा और मूठ वाले डंडे। उनके दांत भालों जैसे नोकीले हैं, लंबे नख हैं और रूप इतना भयानक कि उन्हें देखकर ही मरते हुए का हृदय दहल जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि इन यमदूतों को देखकर प्राणी भय के मारे चिल्लाने लगता है, उसका हृदय तेजी से कांपने लगता है और रोम रोम सिहर उठता है। यमदूत पापी आत्मा के पास आकर कोई नम्रता नहीं दिखाते, वे क्रोध में गरजते हुए कहते हैं,
1: अरे पापी चल, आज तेरा समय पूरा हुआ, तुझे हम यमराज के पास लेकर जा रहे हैं।
0: मरने वाला अपने रोते परिवार को देखकर विलाप करता है, पर यमदूत उसको जरा भी मोहलत नहीं देते। वे लोहे के फंदे से उसका गला कसकर बांध देते हैं और जबरन आत्मा को शरीर से घसीटने लगते हैं। आत्मा का बाहर निकलना बेहद दर्दनाक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी की आत्मा को कान, नाक, आंखें आदि जिस भी छेद से घसीटना पड़े, ये दूत बलपूर्वक खींचते हैं और उस दौरान आत्मा चिल्लाती हुई शरीर से अलग की जाती है। वो आत्मा अपने ही पुराने शरीर को अंतिम बार व्याकुल नजरों से देखती है, जब यमदूत उसे दूर ले जाने लगते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं आत्मा किस अंग या छिद्र से शरीर छोड़ती है। ये सवाल बड़ा रोचक है, आत्मा आखिर शरीर से निकलती कहाँ से है? हमारे शरीर में कुल 9 प्रमुख द्वार या छिद्र माने गए हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, ये 7 ऊपरी द्वार हुए, और 2 निचले द्वार, मल द्वार, गुदा और मूत्रेंद्रियो जननेन्द्रिय। कुछ मतों में सिर के ऊपर सहस्रार या ब्रह्मरंध्र को 10वां द्वार भी कहा गया है, पर शास्त्रों में प्रायः 9 द्वार की ही बात आती है। आत्मा इन द्वारों में से किसी एक से निकल सकती है, मगर कौन से छिद्र से निकलेगी ये निर्भर करता है मरने वाले के कर्मों पर। गरुड़ पुराण का मत स्पष्ट है, यदि आत्मा पुण्यात्मा है, अच्छे कर्मों वाली है, तो वो शरीर के ऊपरी ऊर्ध्व द्वारों से प्रस्थान करेगी, और यदि पापी है तो निचले छिद्रों से। पुण्यवान लोगों की आत्मा प्रायः सिर के ऊपर स्थित द्वार ब्रह्मरंध्र या मुंह, आंख, नाक जैसे ऊर्ध्व छिद्रों से निकलती है। इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है आत्मा की गति ऊपर ऊर्ध्व लोकों की ओर होगी, दिव्य मार्ग देव यान से जाएगी। विशेषकर जो आध्यात्मिक साधना में पारंगत हैं, योगी हैं या परमात्म भक्त हैं, उनके सहस्रार से आत्मा निकलकर परम लोक की ओर जाती है। माना जाता है कि यह मुक्ति का मार्ग है। इसके विपरीत पापी आत्माएं प्राण छोड़ती हैं तो निम्न द्वार से उनका जीवन निकलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी के प्राण मल मूत्र के रास्ते नीचे निकल जाते हैं। आत्मा अगर गुदा द्वार या जननेन्द्रिय जैसे निचले छिद्र से निकले तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। ये दर्शाता है कि आत्मा अधोगति नीचे लोकों की ओर जा रही है। ऐसे प्राणी की आत्मा मर कर सीधे यमलोक, प्रेतलोक या नरकों की ओर जाएगी। साफ शब्दों में ऊपरी द्वार से आत्मा का निकलना पुण्य का फल है और निचले द्वार से निकलना पाप का फल। यही कारण है कि हमारे शास्त्र मृत्यु के समय भगवान के नाम स्मरण, गंगा जल, तुलसी दल आदि देने को कहते हैं, ताकि अंत समय शुभ हो और आत्मा ऊर्ध्व मार्ग से शांति पूर्वक निकले। अब खास तौर पर अगर स्त्री की बात करें, स्त्री की आत्मा भी यही नियम मानकर शरीर से निकलती है। पुण्यवती स्त्री जिसकी जिंदगी धर्म पूर्ण रही हो, सेवा, सत्य, संयम से भरी, उसकी आत्मा ऊपरी छिद्र, मस्तक, नेत्र, नासिका या मुख में से किसी से प्रस्थान करेगी। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसी आत्मा के निकलते वक्त चेहरे पर एक शांत चमक दिखाई देती है, शरीर बिना ज्यादा तड़पे शांत हो जाता है। दूसरी ओर पापिनी स्त्री जिसने जीवन भर अधर्म, अत्याचार, अनैतिक कर्म किए हों, उसकी आत्मा अक्सर नीचे वाले रंध्रों से बाहर जाती है, जैसे गुप्तांग या गुदा मार्ग से। ये उसके भारी पापों का संकेत है कि मृत्यु भी कष्टदायी हुई और आत्मा अधोलोक को चली। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, पापी के प्राण नीचे के द्वार से निकलते हैं। मतलब यही कि स्त्री हो या पुरुष, पाप पुण्य के अनुसार आत्मा के निकलने का मार्ग तय होता है। मृत्यु के बाद आत्मा की गति कैसी होती है? शरीर छूटने के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। अब आत्मा अकेली है, न कोई रिश्तेदार साथ जाता है, न दौलत, न शरीर, केवल उसके अच्छे बुरे कर्म साथ हैं, जिनके आधार पर उसे आगे का मार्ग मिलता है। हिंदू धर्म में 2 मुख्य मार्गों का वर्णन मिलता है, देवयान, देवों का मार्ग, और पितृयान, पितरों का मार्ग। इसका मतलब सरल भाषा में, जो आत्माएं आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, जिनका जीवन पवित्र रहा, वे देवलोक या ईश्वर के धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर चलती हैं, और बाकी आम आत्माएं पितृलोक या यमलोक जाने वाले मार्ग से गुजरती हैं, जहां उनके कर्मों का फल नरक या स्वर्ग निर्धारित होता है। यमलोक की यात्रा पितृयान मार्ग। अधिकांश आत्माओं को मृत्यु के बाद यमदूत यमराज की सभा यमपुरी में ले जाते हैं। जैसा हमने देखा, पापियों को क्रूर यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। ये यात्रा गरुड़ पुराण में काफी लंबी बताई गई है, लगभग 86,000 योजन यानी बहुत लंबा रास्ता पार कर आत्मा यमराज के शहर पहुंचती है। रास्ते में 16 भयानक नगर आते हैं, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग कष्ट और मनोव्यथा झेल हिलती है। जब हम उदाहरण के लिए कहीं तपती रेत की सड़क है जहाँ प्यास से व्याकुल आत्मा नंगे पैर दौड़ती है, तो कहीं आग के जंगल की लपटे हैं, कहीं बर्फ जैसी ठंड। एक भयानक नदी आती है, वैतरणी नदी, जो रक्त पीप और गंदगी से भरी है, जिसमें मगरमच्छ सांप जैसे जीव है। जिसने जीवन में गोदान किया हो या पुण्य किए हो, उसे इस वैतरणी को पार कराने नाव या गाय की पूंछ मिल जाती है, पर जो पापी हो वो इसमें डूबकर यातना पाता हुआ पार होता है। आत्मा को प्रत्येक क्षण एहसास होता चलता है कि उसने जीवन में क्या पाप किए। यमदूत रास्ते भर उसे कोड़े मारते हैं, धक्के देते हैं और डराते हैं। आत्मा भूखी प्यासी थकी हुई बेबस सी आगे बढ़ती है, उसे अपने परिवार की याद सताती है, पर अब पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। लगभग 47 दिन या कुछ हफ्तों का समय इस यात्रा में लग जाता है। भिन्न ग्रंथों में अलग वर्णन है। अंत में यमपुरी, यमराज की नगरी आ जाती है, जहां यमराज को दक्षिण दिशा का फाटक पापी आत्माओं के लिए खोलने को कहा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यमपुरी के चार द्वार हैं, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिणा। दक्षिण द्वार से वे आत्माएं लाई जाती हैं जिन्होंने जीवन भर पाप और अधर्म किए, यमराज के दरबार में पेश होने के लिए। वहां चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा पढ़कर सुनाते हैं और यमराज उनके दंड या पुरस्कार का फैसला करते हैं। फिर उन आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक भेजा जाता है, या कुछ को थोड़े बहुत पुण्य हो तो कहीं अल्प सुख भोगने स्वर्ग में भी भेज सकते हैं। लेकिन स्वर्ग नरक का समय खत्म होने के बाद ज्यादातर आत्माओं को फिर से पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। ये संसार चक्र यूं ही चलता रहता है। देवयान मार्ग ऊर्ध्वगमन। अब प्रश्न आता है कि क्या सबको यमदूत ही लेने आते हैं? नहीं, भक्ति और पुण्य के बल पर कुछ आत्माओं के लिए रास्ता थोड़ा भिन्न हो सकता है। यदि स्त्री ने अपना जीवन बड़े सत्कर्मों में लगाया, ईश्वर भक्ति की या योग साधना द्वारा आत्मोन्नति की, तो मरते समय माहौल फर्क होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी धन्य आत्मा की मृत्यु शांत होती है, अंतिम सांसें भी आसानी से निकलती हैं, चेहरे पर तेज होता है, आसपास परिवार जनों द्वारा राम नाम भगवान की बातें की जाती हैं, गंगा जल तुलसी दल दिया जाता है जिससे उसकी आत्मा को संबल मिलता है। सबसे बड़ी बात, उस आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटने नहीं आते, उसके बदले दिव्य दूत या देवदूत आते हैं जो बड़े आदर से आत्मा को साथ लेते हैं। ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रायः सिर के ऊपर या अन्य ऊर्ध्व द्वार से निकलती है, जो बताता है कि इस जीव ने जीवन पवित्र जिया। देवदूत आत्मा को सम्मान पूर्वक यमपुरी के दक्षिण द्वार से नहीं, बल्कि अन्य द्वारों, पूर्व या उत्तर से अंदर ले जाते हैं। इसका फल यह होता है कि यमराज की सभा में भी उसके साथ कठोरता नहीं होती, बल्कि गरिमा के साथ पेशी होती है। कई बार कहा जाता है कि
2: मेरे प्यारे सुनने वालों, ये कथा को मैं यहाँ पर थोड़ा विश्राम दे रही हूँ।
3: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: मन्ना दे जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत तेरी गर्म कहानी, ये आप ही जानते हैं और परमात्मा जी जानते हैं। जैसे हमने अभी कथा में सुन रहे थे और पंडित जी बता रहे कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो सब पर नोट करता है कि हम क्या करते हैं। एन सेख ओक बाय दिस यू एइगन गेवेटन इज यू रेखटर। जो कथा का हमने विश्राम दी थी यहाँ से हम आपके लिए
1: जन्म लेना पड़ता है। ये संसार चक्र यूं ही चलता रहता है, देवयान मार्ग ऊर्ध्वगमन। अब प्रश्न आता है कि क्या सबको यमदूत ही लेने आते हैं? नहीं, भक्ति और पुण्य के बल पर कुछ आत्माओं के लिए रास्ता थोड़ा भिन्न हो सकता है। यदि स्त्री ने अपना जीवन बड़े सत्कर्मों में लगाया, ईश्वर भक्ति की या योग साधना द्वारा आत्मोन्नति की, तो मरते समय माहौल फर्क होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी धन्य आत्मा की मृत्यु शांत होती है, अंतिम सांसें भी आसान से निकलती हैं, चेहरे पर तेज होता है, आसपास परिवार जनों द्वारा राम नाम भगवान की बातें की जाती हैं, गंगा जल तुलसी दल दिया जाता है जिससे उसकी आत्मा को संबल मिलता है। सबसे बड़ी बात, उस आत्मा को यमदूत

0: जबरदस्ती घसीटने नहीं आते, उसके बदले दिव्य दूत या देवदूत आते हैं जो बड़े आदर से आत्मा को साथ लेते हैं। ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रायः सिर के ऊपर या अन्य ऊर्ध्व द्वार से निकलती है, जो बताता है कि इस जीव ने जीवन पवित्र जिया। देवदूत आत्मा को सम्मान पूर्वक यमपुरी के दक्षिण द्वार से नहीं बल्कि अन्य द्वारों पूर्व या उत्तर से अंदर ले जाते हैं। इसका फल यह होता है कि यमराज की सभा में भी उसके साथ कठोरता नहीं होती बल्कि गरिमा के साथ पेशी होती है। कई बार कहा जाता है कि ऐसे धर्मात्मा को यमलोक में भी नहीं रुकना पड़ता, सीधे इंद्र आदि देवताओं के लोक स्वर्ग में स्थान मिलता है। कुछ श्रेष्ठ आत्माएं जिन्होंने ईश्वर की अनन्य भक्ति की हो वे देह छोड़कर सीधे परम धाम चली जाती हैं। जैसे विष्णु भक्तों के लिए कहते हैं कि विष्णु दूत आते हैं और उस आत्मा को बैकुंठ ले जाते हैं, फिर यमराज के दूत तो पास भी नहीं भटकते। अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि पुण्य आत्माओं को मृत्यु के बाद ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है जहाँ कोई कष्ट नहीं होता, जबकि पापियों को कष्टदायक रास्ते से यमलोक ले जाया जाता है। कुल मिलाकर जैसे कर्म वैसा फल। मरने के बाद आत्मा या तो देवयान प्रकाश मार्ग पकड़ती है या पितृयान धूम्र मार्ग पकड़कर न्याय के लिए यमराज की ओर जाती है।
1: दोस्तों, अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका जिक्र सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। पाप कर्मों के आधार पर अगले जन्म की योनियां गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कौन से पाप के फल स्वरूप आत्मा को अगले जन्म में किस योनि से जानवर आदि में जन्म लेना पड़ता है। खासकर स्त्रियों के संदर्भ में कुछ पाप ऐसे बताए गए हैं जिनसे उन्हें बड़ी ही नीच योनियों में जाना पड़ सकता है। आइए कुछ उदाहरण कहानी की तरह समझें। पति से बेवफाई या पर पुरुष गमन, व्यभिचार। यदि किसी स्त्री ने अपनी पति को धोखा दिया, पर पुरुष के साथ संबंध बनाए या उल्टा आचरण किया तो शास्त्रों में उसका फल भयंकर बताया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है जिसमें ऐसी स्त्री मरने के बाद लंबे समय तक नर्क में सड़ती है और फिर लाखों बार गिद्ध बनकर जन्म लेती है। सैकड़ों वर्षों तक सुवर्णी से मादा सुअर की योनि में रहती है और सैकड़ों जन्म तक जंगली हिंसक जानवर बनती है। देखिए, एक पति को त्यागने या व्यभिचार करने का कितना भयानक परिणाम बताया है। पहले असंख्य नरक यातनाएं, फिर गिद्ध सुअर हिंसक जानवर बनना। अंत में कहा गया है कि यदि कभी वो स्त्री फिर मानव रूप में आती भी है तो विधवा दरिद्र और रोगिणी बनकर जन्म लेगी। गरुड़ पुराण में भी कहा है कि जो पुरुष पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं उन्हें अगले जन्मों में भयानक राक्षस योनि भुगतनी पड़ती है। विशेषकर यदि वो स्त्री किसी ब्राह्मण या पूज्य कुल की थी तो वो पिशाच ब्रह्म राक्षस बनकर भटकते हैं। एक जगह ये भी वर्णन है कि पराई स्त्री से संबंध रखने वाला अगले जन्म में सियार होता है। अब स्त्री ने खुद अपने शरीर को पाप कर्म में लगाया तो उसे भी उस पाप का फल समान ही मिलता है। यानी ऐसी पापिनी स्त्री भी मरकर आत्मा के रूप में प्रेत योनि में भटकती है और फिर कुतिया सियारिन जैसी नीच योनि में जन्म लेती है जहाँ जीवन भर उसे तृष्णा और तिरस्कार ही मिलता है। गर्भपात या गर्भ की हत्या। हमारे धर्म ग्रंथों में गर्भपात को एक बहुत बड़ा पाप माना गया है क्योंकि ये सीधे एक अनजान जीव की हत्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यमराज कहते हैं जो व्यक्ति गर्भ में पल रहे शिशु का नाश करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद सीधे कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। कुंभी पाक वो नरक है जहाँ उबलते तेल की कड़ाहियों में आत्मा को उबाला जाता है। वहाँ इस पापी आत्मा को अत्यंत लंबे समय तक 14 इंद्रों की आयु जितने समय तक यंत्रणा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी गर्भ हत्या महापाप है जो लगभग ब्रह्म हत्या के बराबर दंड का भागी बनाती है। नरक यातना के बाद ऐसी आत्मा का छुटकारा नहीं होता, उसे बहुत से नीच जन्मों से गुजरना होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विवरण मिलता है कि गर्भपात करने वाले अगले 100 जन्म तक सुअर की योनि में जन्म लेते हैं, फिर 7 जन्म तक गाय की योनि में, 7 जन्म तक सर्प की योनि में, फिर 60,000 वर्षों तक कीड़े मकोड़े बनकर गंदगी में पैदा होते हैं।
2: यह क्रम सुनकर ही रूह कांप जाती है। सुअर जैसी तुच्छ और गंदी समझी जाने वाली योनि, फिर नाग जैसे डरावने जीव और न जाने क्या क्या। अंततः ऐसे पापी को इंसान की देह भी मिलती है तो भयंकर रोगों से ग्रस्त निर्धन निश्चित अपरिवारिक जीवन मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में गर्भपात को कदापि उचित नहीं माना गया। कहा गया है कि माँ के गर्भ में बच्चे की हत्या सीधे घोर नरक का द्वार खोलती है। चोरी और छल कपट। अगर स्त्री चोरी चकारी करती है, धोखे से दूसरों की वस्तु चुराती है तो उसके अनुसार भी अगले जन्म में दंड भुगतना
1: करना पड़ता है। गरुड़ पुराण विभिन्न तरह की चोरी पर अलग अलग योनि की बात बताता है। जैसे जो अनाज चुराता है वो अगले जन्म में चूहा बनता है, जो वाहन चुराता है वो ऊंट बनता है, फल चोरी करने वाला बंदर बनता है, बर्तन चुराने वाला गिद्ध या कौआ बनता है, जिसने गाय चुराई हो वो भी गिद्ध जैसा पक्षी बनता है, क्योंकि गाय जैसा पवित्र प्राणी चुराना महापाप है। जो कपड़े चुराता है वो अगले जन्म में कीट बनता है। गरुड़ पुराण में कहा है कपड़ा चोर पतंगा होता है। महिलाओं से जुड़ी एक बात ये भी आती है कि जो स्त्री दूसरी स्त्रियों के गहने या कपड़े चुराती है उसे कुष्ठ रोग तक हो सकता है, यानी मानव जन्म मिला भी तो अपंग अवस्था में। कुल मिलाकर चोरी का परिणाम भी कभी पशु योनि तो कभी भयंकर बीमारी के रूप में मिलता है। यही कारण है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है चोरी सबसे घिनौनी आदतों में है, इसका पाप जीवन भर पीछा करता है। निंदा, परनिंदा और असत्य भाषण। अक्सर लोग सोचते हैं कि जुबान के पाप शायद उतने बड़े नहीं होते, लेकिन पुराण कहते हैं कि दूसरों की निंदा या बेहुदा बातें करने का फल भी कष्टदायक जन्मों में मिलता है। जो लोग दूसरों को बेवजह बदनाम करते हैं, सत्यनिष्ठ भले लोगों की बुराई करते हैं, अगले जन्म में उन्हें नीच योनि या अपंगता झेलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए गरुण पुराण में आता है, जो व्यक्ति पापपूर्ण आचरण करके लोक में बदनामी कमाता है वो अगले जन्म में कछुआ बनता है। इसे आप यूं समझिए कि जिसने जीवन में कुचर्चा, कलंक और कलह फैलाए, उसका अगला जन्म ऐसी योनि में होगा जो अधोगति का प्रतीक है। कछुए का जीवन जल मिट्टी में गुजरता है, बहुत धीमा और तुच्छ समझा जाता है। इसी प्रकार अत्यधिक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति भी अगले जन्म को खराब करती है। कहा गया है ईर्ष्यालु व्यक्ति अंधा पैदा होता है या मधुमक्खी जैसा कीट बनता है जो केवल डंक मारना जानता है। लगातार झूठ बोलने वाले की अगले जन्म में जुबान काम नहीं करती, वो गूंगा या हकला पैदा होता है। जिन महिलाओं को दूसरों की खुशियों को देखकर जलन होती है और वे चुगली निंदा में लिप्त रहती हैं, वे अगले जन्म में संभवतः उसी तरह किसी तुच्छ जानवर जैसे कौआ या चील की योनि में जाएंगी, जो हमेशा मल में मुंह मारते हैं। शास्त्रों में गिद्ध कौए को अक्सर नीच कर्मों का फल बताया गया है। गरुड़ पुराण तो पापों की पूरी सूची देता है। कुछ का जिक्र पुरुषों के संदर्भ में है, पर स्त्रियां भी वही कर्म करें तो परिणाम समान ही रहते हैं। जैसे गुरु की हत्या करने वाला मिर्गी का रोगी होकर जन्मता है, निर्दोष जीवों पर अत्याचार करने वाला बौना बनता है, जो अपने पति या परिवार को छोड़कर दूसरों से अवैध संबंध बनाए, उसका अगला जन्म ऐसा पशु होगा जिसे शिकारी मार डालेंगे, यानी उसकी जिंदगी बहुत छोटी और कष्टपूर्ण होगी। जो अपने पति की हत्या कर दे या उस पर अत्याचार करे, ऐसी स्त्री को अगले जन्म में पति का सुख नसीब नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर तक अकेली रहकर दुख भोगती है। ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण या संत की हत्या का पाप तो सबसे भारी है। ऐसे पापी को कई जन्मों तक घोर नरकों में जलने के बाद ऊंट, सुअर, घोड़ा जैसे पशुओं की योनि में भटकना पड़ता है। गौ हत्या का पाप भी अनंत नरक भोगने के बाद सर्प और अन्य जहरीले जीव बनकर भुगतना पड़ता है। यहाँ तक कि जो लोग माता पिता या अतिथियों का अपमान करते हैं, वे अगले जन्म में बहरे, अंधे, कुबड़े जैसे अंगहीन शरीर लेकर पैदा होते हैं। और भगवान की निंदा या शिव आदि देवों का अपमान करने वाले अगले जन्म में गुप्त रोग, त्वचा रोग जैसे दुख झेलते हैं। स्पष्ट है, हर छोटे बड़े पाप का फल किसी न किसी योनिगत दुर्गति या मानव जन्म में भारी कष्ट के रूप में मिलता ही है। इन सब कथाओं का सार यही है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। स्त्री हो या पुरुष, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे मरने के बाद और अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ये पुराणों में बताए विवरण कभी कभी हमें डराने के लिए भी होते हैं, ताकि हम अनुचित कर्मों से दूर रहें। आखिर गरुड़ पुराण स्वयं एक दर्पण की तरह है, जिसमें हमारे कर्मों का परिणाम दिखाकर हमें सचेत किया जाता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक यात्रा का पड़ाव है। आत्मा अमर है, पर अच्छे बुरे कर्मों की गठरी उसके साथ चलती है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को चाहिए कि जीवन में सदाचार, सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चले। ऐसा करने से न सिर्फ मौत के वक्त कम कष्ट होगा, बल्कि आत्मा उज्जवल मार्ग से जाएगी और हो सकता है पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाए। अगर भूलवश पाप हो भी जाए तो शास्त्र प्रायश्चित और सुधार का मार्ग बताते हैं। ईश्वर भक्ति, दान पुण्य, सेवा और पश्चाताप से कर्मों का बोझ हल्का किया जा सकता है। आखिर में
3: हिंदू धर्म ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि जीवन एक अनमोल अवसर है आत्मा के विकास का। मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन वो अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। इस शुरुआत को सुखद या दुखद बनाना हमारे हाथ में है। हमारे कर्म ही तय करेंगे कि मरने के बाद यमदूत हमारा हाथ पकड़ेंगे या विष्णुदूत। हम नरक के अंधकार में रास्ते पर जाएंगे या देवों की ज्योतिर्मय राह पर। इसलिए ऐसी कथाएं सुनकर डरे नहीं, बल्कि सबक लें। जीवन को इस तरह जिए कि अंत समय शांतिमय हो, ताकि जब हमारी आत्मा देह त्याग तो चेहरे पर मुस्कान हो, हृदय में भगवान का नाम और मार्ग दिखाने को दिव्य ज्योति हो। यही इन पुराण कथाओं का संदेश है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के आत्मा के सफर के विषय में बताया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो

बात तो सही है कि नेकी तेरा साथ चलेगी बाबा, और ये सुना दी हमको आज के प्रोग्राम में महेंद्र कपूर जी। महेंद्र कपूर जी की आवाज में नेकी तेरा साथ चलेगी। फिल्म का नाम आप जरूर जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, फिल्म का नाम आंसू और मुस्कान, और हम देख रहे हैं ये फिल्म नई खंतीन सैफ अंतक में रिलीज किया गया है। आपको लेकर चलते हैं देखे तो एक बार फिर महेंद्र कपूर जी के आवाज में, और क्या फरमा रहे जरा हम मिलकर सुने।

अवश्य अवश्य, महेंद्र कपूर जी ने फरमा दी है कि क्यों करता है हेरा फेरी, ये दौलत ना आपके है ना मेरी है, ये दौलत हमों का नाम को कमाना पड़ता है, ये जीवन सफल बनाने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए औरों को काम आने के लिए।

कौन-कौन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे आमदनी के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। आमदनी के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: सुना लागे रज का धाम, गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम।
1: Fastnet staat voor je klaar met een snelle...
2: रफ़ी जी के आवाज़ में हमने श्रवण की है ये सुंदर ये मधुर भरी गीत आवाज़ में कि सुना सुना लागे बिरज का धाम। जब कन्हैया जी बिरज ग्वाल को ब्रज धाम को छोड़कर जा रहे थे तो गोकुला गोकुल गोपियाँ ये सब गीत बिरह के सुनाई, और ये ख़ास तौर पर आप ही का मनपसंद गीत जो आपने गुजारिश की यहाँ से हमने आपके लिए पेश कर दी है।

राजेश शिव नंदन जी के आवाज में यहाँ से आपके लिए पेश किया गया है अपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों,

पिल्ले वालों का सेवा सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है वी फाउन एफ एम चैनल पर और वीफी रेडियो इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो 7 का वक्त है। जी हाँ, नई गिनती उर। अब यहाँ से मैं परिवार रघुनाथ की फरमाइश से यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अल्फरान रेन के निवासी

सुने, वाह क्या बात है। आज मानदा फिर दिन सितंबर है, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं परिवार रघुनाथ की फरमाइशों से। अल्फरान द रेन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ जी की आज मानदा फिर दिन सितंबर को 70वां जन्म दिवस है। सैफ अंतस्त फरियादा, वाह क्या बात है। वतन मेल पाल मफरोख खिसला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से श्रीमती खिसला रघुनाथ को हार्दिक बधाई, शुभकामना, प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ ये फरमाइश फाहुन रेडियो द्वारा शुरू करते हैं। हमने अल्फरान के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मानदा 3 सितंबर का 70वां जन्म दिवस है। इस शुभ अवसर पर परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, याचना करते हुए भगवान से कि उनकी तंदुरुस्ती दृष्टि बनी रहे, वो पेश करती है ये शानदार गीत इस तरह से आ रहा है।

जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती, पिता महादेवा, अनुराधा पौडवाल आपको सुनाए। जबकि आज मानदा 15 सितंबर है, अल्फानंद रैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ का जन्मदिवस है। शुभकामना के साथ अपने आप के लिए खिसला रघुनाथ जी ने पेश किए। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है अल्फानंद रैन के रहने वाली। जबकि आज मानदा 15 सितंबर है तो श्रीमती खिसला रघुनाथ की जन्मदिवस है। हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं वो अपने लिए।

ओम जय जगदीश हरे, ये गीत पेश हुआ। जबकि आज जब मानदा 13 सितंबर है तो अल्फन अंदर इनके रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज जन्मदिवस है। जन्मदिवस के उपलक्ष पर अपने आप के लिए हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ ये गीत वो पेश करवा रही थी। अल्पनांदरैन के रहने वाले श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मानदा 13 सितंबर है जबकि उनका जन्मदिवस है। जन्मदिवस के उपलक्ष पर हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ तंदुरुस्ती और दृष्टि की प्रार्थना करते हुए भगवान से वो मांग रही है ये गीत।

ओम जय श्री ओमकारा। आज मानदा 14 सितंबर है, तो जाहिर है कि अल्फानंद रहन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर उन्होंने ये गीत अपने लिए मांगे हैं, परमात्मा से ये प्रार्थना करते हुए कि उनकी तंदुरुस्ती बनी रहे। दिल की गहराइयों से ये आशा है और आशीर्वाद मांग रहे परमात्मा से, बहुत लाड प्यार दुलार मांग रही है शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, मानदा 14 सितंबर जबकि आज है अल्फानंद रहन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर उन्होंने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा ये गीत को मांगे हैं और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा खिसला जी आपको भी जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया जा रहा है।

श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जबकि आज मानदा 13 सितंबर है तो अल्फा नंद रैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ जी की आज जन्मदिवस है। शुभकामना के साथ अपने आप के लिए खिसला जी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए ये गीत मांगे हैं। अल्फा नंद रैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ जी की आज 13 सितंबर जबकि मानदाख है, उनका जन्मदिवस है तो शुभ अवसर पर उनके लड़के देखते हैं बेटी रजनी अपनी माँ के लिए और दामाद शूर्त इदमा अपने सास के लिए यानी सोन जोन फोर्स हैं सोन उधर और देविका अपनी माँ के लिए। हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ दुलार के साथ ये गीत मांग रहे हैं।

भगवान सलामत रहे माँ बाप हमारे। ये गीत पेश हुआ जबकि अल्फानंद रेन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मानदा 13 सितंबर का जन्मदिवस है। हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया गया दो बेटियाँ रजनी की तरफ से अपनी प्यारी माँ के लिए और देविका की तरफ से भी अपने प्यारी माँ के लिए और दामाद शूर्त इदमा की तरफ से अपने सास के लिए यानी फोर्सेंस होम मदर। जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया गया। नेक्स्ट सॉन्ग हम चला रहे हैं और वो है अल्फानंद रेन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ जी के लिए। आज मानदा 13 सितंबर के उनका जन्मदिवस है। हार्दिक बधाई पेश किया जा रहा है बेटी देविका की तरफ से उनकी माँ और रजनी की तरफ से अपनी माँ के लिए और दामाद शूर्त इदमा के लिए के तरफ से अपनी सास के लिए हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ। चलिए हम चला रहे हैं ये गीत।

बहुत लाड प्यार अपनी माँ को दीजिए, हाँ इतना प्यार करेगा कौन, जबकि आज माँ दफेर दिन सितंबर है तो जाहिर है कि अल्फा नंदर इनके रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज जन्मदिवस है। शुभकामना प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ उनके बेटी रजनी की तरफ से माँ के लिए, और दामाद शूर्त इदमा की तरफ से अपने सास के लिए, और बेटी देविका की तरफ से माँ के लिए हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया गया। अगला गीत है और ये भी बच्चों की तरफ से, अल्फा नंदर के रहने वाली खिसला रघुनाथ जी की आज मानदक फिर 3 सितंबर है तो जाहिर है कि उनकी जन्मदिवस है, तो हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ ये गीत मांग रहे हैं उनकी बेटी रजनी अपनी माँ के लिए, दामाद शूर्त इदमा अपने सास के लिए, और देविका अपनी माँ के लिए। हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ ये शानदार गीत मन्ना देवी जी की।

माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, बहुत प्यार दी है बच्चों ने अपनी माँ को, क्योंकि माँ ने भी प्यार दी अपने बच्चों को। हार्दिक बधाई पेश किया जा रहा है अल्फा नंदर इनके रहने वाली, जबकि आज श्रीमती खिसला रघुनाथ की जन्मदिवस है। हार्दिक बधाई पेश किया जा रहा है उनकी दो बेटियाँ रजनी की तरफ से माँ के लिए और देविका की तरफ से भी अपने माँ के लिए, और दामाद शूर्त इदमा की तरफ से अपने सास के लिए हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया गया। अब आ रहा है वह क्या बात है, अल्फा नंदरैन के रहने वाली श्रीमती खिसरा रघुनाथ की आज मानदा 13 सितंबर के जन्मदिवस है। तो उनके प्यारा पति श्रीमान चांद रघुनाथ, जाना पहचाना चांद रघुनाथ, अपनी प्यारी धर्म पत्नी को हार्दिक बधाई शुभकामना, प्रेम प्यार और मोहब्बत के साथ दिल की गहराइयों से ये गीत चांद रघुनाथ मांग रहा है अपनी प्यारी धर्म पत्नी खिसला के लिए।

वाह भैया जान, इसमें कोई शक नहीं है, अल्फा नंदरेन के रहने वाला श्रीमान चांद रघुनाथ, श्रीमान चांद रघुनाथ अपनी प्यारी धर्म पत्नी के लिए, जबकि आज उनका जन्मदिवस है मादा फिरदी सितंबर को, हार्दिक बधाई, प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने ये गीत पेश किए। चांद जी बहुत बहुत धन्यवाद, और फाउ हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से खिसला जी आपके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई पेश किया जा रहा है। अगला सॉन्ग जी हाँ, और वो है आज अल्फा नंदरेन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ जी की, जबकि आज मादा फिरदी सितंबर है, जन्मदिवस है, तो हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ श्रीमान चांद रघुनाथ अपने प्यारी धर्मपत्नी के लिए पेश करवा रही है ये शानदार गीत फिल्म धरती में से निकाल कर, इस तरह से भैया चांद खिसला जी के लिए।

इस धरती पर वाह क्या बात है, जबकि आज मानदा 15 सितंबर है, अल्फा रंदरेन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज जन्मदिवस है। तो अल्फा रंदरेन के रहने वाले श्रीमान चांद रघुनाथ, उनके प्यारा पति अपने प्यारी धर्मपत्नी के लिए ये गीत मांग की है। चलिए अगला सॉन्ग है महेंद्र कपूर जी का और अल्फा रंदरेन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मानदा 15 सितंबर के जन्मदिवस है। तो श्रीमान चांद रघुनाथ जी हाँ, उनके प्यारा पति अपने प्यारी धर्म पत्नी को जी हाँ हार्दिक बधाई, प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ दिल की गहराइयों से क्या कह रहा है।

नई रोशनी में से निकाले हैं ये गीत, प्यारा गीत, और पेश हुआ अल्फरांदर एन के रहने वाली, आज मांदा फिरती सितंबर के श्रीमती खिसला का जन्मदिवस है। तो प्यारा पति देव श्रीमान चादर घुनाथ अपनी प्यारी धर्मपत्नी को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहा था। अगला सॉन्ग है, बच्चों की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं अल्फरांदर एन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की, आज मांदा फिरती सितंबर के जन्मदिवस है तो शुभ अवसर पर उनके दो बेटी रजनी अपनी माँ को और देविका भी अपनी माँ को और दामाद शूर्त इदमा अपनी सास को हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ ये गीत पेश किया जा रहा है।

0: मुझे प्यार दे दो माँ। और ये गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फरमाइश कार्यक्रम में, जबकि आज अल्फा नांदरेन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर उनके दो बेटी रजनी की तरफ से अपनी माँ को और देविका की तरफ से अपनी माँ को और साथ ही साथ दामाद शूर्त इदमा अपनी सास को जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे थे। चलिए यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए फरमाइश रोक रहे हैं और विज्ञापन के बाद और न्यूज़ के बाद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम पेश करते हैं न्यूज़ और विज्ञापन।
1: दिस इज वाहुम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: एडवोकेटन कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: इनगेस्क्रेवन एंड गेस्पेशलिसेर्ड इन द रेक्सगेबिडन रजिस्टर फन द ऑर्डर अलगेमीने रेक्सप्रैक्टिक हीरोंडर फले बर्गरलिक रेक्ट ऑफ्टवेल सिविले जाके बस्तुर्सरेक्ट एंड स्ट्राफरेक्ट पर्सोनन एंड फैमिलीरेक्ट सोअल्स एक्सकेडिंग अलिमेंटासीजाकन ओमगंग्सरेगलिंगें ऑउडरशिप एंड एरकेनिंग जेउगरेक्ट मेट फोलगेंडे गेबिडन जेउगबेस्कर्मिंग्सरेक्ट ओंडर टुसेगस्टेलिंग उइट हुइसप्लाट en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Juvenau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, Juvenau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Juvenau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Edward Niesing. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstort in een veld, meldt de Rheinische Post. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangehouden.

युग युग से गीत मिलन के गाते रहेंगे। आओ ये प्यारा गीत पेश हुआ आज, जबकि अल्फरांदर एंड के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ जी की आज जन्म दिवस है। इस शुभ अवसर पर उनका प्यारा पति श्रीमान चांद रघुनाथ अपनी पत्नी को, अपनी प्यारी पत्नी को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहा था। चलिए अगला गीत है, वह क्या बात है, महेंद्र कपूर एक बार फिर है, महेंद्र कपूर एक बार फिर है और आपको सुनाया जा रहा है। अल्फानंद रैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ जी की आज मानदा 13 सितंबर के 70वां जन्मदिवस है। सैफ दफर यारदाख इस शुभ अवसर पर उनका प्यारा पति श्रीमान चांद रघुनाथ जी, मां चांद रघुनाथ हार्दिक बधाई शुभकामना प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ वो पेश कर रहा है ये शानदार गीत महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज़ में।

वह महेंद्र कपूर जी आपको सुनाए हुआ भैया चार रघुनाथ आंखों में कयामत के काजल, जबकि आज अल्फा नरेंद्र है इनके रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की मानदा 13 सितंबर को जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर उनके प्यारा पति श्रीमान चांद रघुनाथ अपने प्यारी धर्मपत्नी को प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ ये गीत मांग रहा था। चलिए अगला गीत हम पेश करते हैं और देखते हैं अल्फा नरेंद्र इनके रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ जी की आज मानदा 13 सितंबर के जन्मदिवस है, तो उनके प्यारे बच्चों, जी हाँ उनके प्यारे बच्चों जैसे कि बेटी रजनी अपनी माँ को और दामाद शूर्थ इदमा अपने सास को और देविका अपनी माँ को जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ ये प्यारा गीत पेश करवा रहे हैं ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

वाह क्या बात है, बच्चों अपनी माँ को इतनी आशा दिलाते हैं, जबकि आज अल्फा रैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज जन्मदिवस है। सो अवसर पर दो बेटियाँ रजनी अपनी माँ को, देविका अपनी माँ को, और सोन सोन यानी दामाद शूर्त इदमा अपनी सास को प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे थे। अगला सॉन्ग है वह क्या बात है भैया चांद, अल्फा नंदरेन के रहने वाला श्रीमान चांद रघुनाथ अपनी प्यारी धर्मपत्नी खिसला के लिए ये सॉन्ग रखे हैं, जबकि आज उनका जन्मदिवस है मादा फिर 3 सितंबर को। तो प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ दिल की गहराइयों से भैया चांद ये गाना मांग रहा है।

तुम अगर साथ देने का वादा करो तो ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। ये शानदार गीत चला जबकि आज अल्फा रांदर के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की जन्मदिवस है। आज 15 सितंबर है तो प्यारा पतिदेव श्रीमान चांद रघुनाथ अपनी प्यारी धर्म पत्नी को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहा था। अगला सॉन्ग है माई तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस का। अल्फा रांदे रैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मादा 15 सितंबर के जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर प्यारा पति देव दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई शुभकामना प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ ये गीत पेश करवा रहा है।

जीना इसी का नाम है फिल्म अनाड़ी में से निकाला गया और ख़ास फरमाइश है अल्फानंदर रैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की। आज मानदा 3 सितंबर के 70वां जन्मदिवस है सैफ दख्त फरियारदा। तो जाहिर है कि अल्फानंदर रैन से श्रीमान चांद रघुनाथ पति देव अपने प्यारा धर्मपत्नी को हार्दिक बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ कि इनकी तंदुरुस्ती दृष्टि बनी रहे और बहुत बहुत प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ पेश किया गया। अगला सॉन्ग है जी हाँ फिल्म धर्मात्मा में से निकाले हैं, जबकि आज मानदा फिर से 3 सितंबर के अल्फानंदर रैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर उनके प्यारा धर्म पति देव जी हाँ पति देव श्रीमान चांद रघुनाथ अपने पत्नी को हार्दिक बधाई प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ पेश करवा रहा है ये गीत।

0: खिसला जी आओ भैया चांद रघुनाथ, इसमें कोई शक नहीं है। अल्फनंद रेंज के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ जी की आज मानदा फीरती सितंबर के जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर उनकी प्यारा धर्मपत्नी धर्मपति जी हाँ पतिदेव श्रीमान चांद रघुनाथ अपनी पत्नी को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहा था। अगला सॉन्ग बच्चों के ओर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं अल्फनंद रेंज के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज जन्मदिवस है, जबकि मानदा फीरती सितंबर है, तो खुश होकर उनके बच्चे दो बेटियां देवी का अपनी माँ को और साथ ही साथ रजनी अपनी माँ को और सोनसोन यानी दामाद शूर्त इदमा अपनी सास को हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ ये शानदार गीत पेश करवा रहे हैं। माँ ने हमको प्यार दिया इस तरह से।
1: माँ ने हमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। No other love can equal that of a mother for her child. 9 महीने उदर में रखा जब दुनिया में आया। She carried her child for 9 long months. And finally introduced him to the world. She would never hesitate to provide him with all comforts. Singing sweet lullabies to the rhythm of her gentle tapping, she would put her child to sleep. Mata ki mamta aisi badi hai, sagar bada hai jitna. Mother's love is as boundless as the ocean itself. कौन करेगा इतना। नो अदर लव कैन सुपरसीड द लव ऑफ अ मदर फॉर हर चाइल्ड।

माँ ने हमको प्यार किया है जितना कौन करेगा इतना, ये तो माँ ही है, माँ की ममता है, माँ की ममता जो है तो आज अल्फानंदरैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मादा फीरती सितंबर का जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर उनके प्यारे बच्चे हैं, दो बेटियाँ, जैसे कि रजनी की तरफ से अपनी माँ के लिए और दामाद यानी सोन सोन शूर्त ईदमा अपने सास को और देविका अपनी माँ को हार्दिक बधाई शुभकामना जन्मदिवस के उपलक्ष पर पेश कर रहे थे प्रेम प्यार के साथ। अगला सॉन्ग देखते हैं, वाह क्या बात है भैया चांद, अल्फानंदरैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मादा फीरती सितंबर जबकि है उनकी जन्मदिवस है, तो श्रीमान चांद रघुनाथ प्यारा पति अपनी प्यारी धर्मपत्नी को हार्दिक बधाई दिल की गहराइयों से। जी हाँ, प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ ये गीत पेश करवा रहा है इस तरह से।

मैं तू मुकेश और लता जी, महबूब मेरे, जबकि आज अलहन अंदर रहन के रहने वाली श्रीमती हिसला रघुनाथ जी की मानदा फिर 3 सितंबर जब है जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर उनका प्यारा पति देव श्रीमान चांद रघुनाथ अपनी प्यारी धर्मपत्नी को शुभकामना प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ दिल की गहराइयों से ये गीत मांगा है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है फूल तुम्हें भेजा है खत में क्या बात है। अल्पनंद रैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ जी की आज मानदा 3 सितंबर के जन्मदिवस है। शुभ अवसर पर प्यारा पति देव श्रीमान चांद रघुनाथ अपनी प्यारी धर्म पत्नी को इस तरह से एक गुलदस्ता भेज रहा है।

फूल तुम्हें भेजा है। अब ये शानदार गीत चलाओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो अल्फन अंदरैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मानद अखियर 3 सितंबर के जन्मदिवस है। शुभ अवसर पर प्यारा पतिदेव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ ये शानदार गीत पेश किया। और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से खिसला जी आपकी जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई हो। परमात्मा का करे कि आप के ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात ना पैदा होए, शीलता के साथ और धारणा के साथ और आपके जो तंदुरुस्ती है और दृष्टि बनी रहे आशीर्वाद के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। चलिए अगला सॉन्ग हम पेश कर रहे हैं और वो है अल्फन अंदरैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ जी की आज मानद अखियर 3 सितंबर के जन्मदिवस है। शुभ अवसर पर श्रीमान चांद रघुनाथ, श्रीमान चांद रघुनाथ उनका प्यारा पति, हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ दिल की गहराइयों से ये गीत मांग रहा है।

जी का आज मानदा 15 सितंबर के 70वां जन्मदिवस से सैफ अंतक्ष तैयार वतन मेल पाल मुफराव खिसला शुभ अवसर पर उनका पतिदेव, जी हाँ उनका पतिदेव, पतिदेव हार्दिक बधाई शुभकामना प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ ये शानदार गीत पेश करवा रहा है ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

एक प्यार का नगमा है मुकेश जी और लता जी आपको सुनाए हैं, जबकि आज मानदा 13 सितंबर के आल्फन अंदरैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ जी का आज जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर प्यारा पतिदेव, जी हाँ प्यारा पतिदेव, अपने पत्नी को, प्यारी पत्नी को हार्दिक बधाई शुभकामना भेज रहा था इस तरह से। अब चलो बच्चे को और बढ़ते हैं तो देखते हैं आल्फन अंदरैन के रहने वाली श्रीमती खिसला, श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मानदा 13 सितंबर के जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर उनके दो बेटियां रजनी की तरफ से माँ के लिए, देविका की तरफ से भी माँ के लिए, और सोन जोन यानि दामाद श्रीमान शूर्त इदमा अपने सास के लिए जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई शुभकामना प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ ये सच है।

परमात्मा से यही याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए बच्चों ने ये गीत पेश किए। आज मांदा फीरदी सितंबर के अल्फरांदरैन के रहने वाली श्रीमती रघुनाथ, खिसला रघुनाथ की जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर उनके बच्चे बेटी रजनी अपनी माँ को और सोन सोन यानी दामाद शूर्त ईदमा अपने सास को और बेटी देविका अपनी माँ को जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई और शुभकामना पेश कर रहे थे मिलकर। अगला सॉन्ग है अल्फरांदरैन के रहने वाली श्रीमती रघुनाथ, श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मांदा फीरदी सितंबर के जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर उनका प्यारा पति देव श्रीमान चांद रघुनाथ अपने प्यारी पत्नी को, अपनी प्यारी धर्म पत्नी को हार्दिक बधाई शुभकामना, दिल की गहराइयों से ये गीत पेश करवा रहा है इस तरह से भैया चांद। वाह क्या बात है।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
2: अरे बाबा शोर।

जियरारे झूमे रहे ऐसे जैसे बलमा नाचे मोर। अल्पनंद रैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मानदा फिर 3 सितंबर के जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर प्यारा पति देव श्रीमान चांद रघुनाथ अपनी प्यारी धर्म पत्नी को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहा था। अगला सॉन्ग है वह क्या बात है चलने दो। अल्पनंद रैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मानदा फिर 3 सितंबर के जन्मदिवस है। प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ उनकी प्यारी धर्म पत्नी क्षमा करना पतिदेव पति श्रीमान चांद रघुनाथ पतिदेव श्रीमान चांद रघुनाथ इस तरह से।

चाहे तू माने चाहे न माने, ये शानदार द्वैत आपको सुनाया गया। जबकि आज मानदा 13 सितंबर है, अल्फानंदा रेन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की जन्मदिवस है। शुभकामना के साथ, प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ, श्रीमान चांद रघुनाथ अपने प्यारा धर्मपत्नी को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किए। चलिए अगला सॉन्ग और बच्चों की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं अल्फानंदा रेन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ, मानदा 13 सितंबर जबकि आज है जन्मदिवस है, शुभकामना के साथ दो बेटियां रजनी अपनी माँ को और देविका भी अपनी माँ को और प्यारा दामाद सुकून सुन दामाद शूर्त इदमा अपने सास को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे हैं। इस तरह से माँ बाप की चालीसा।

माता पिता चालीसा पेश किया गया और देखते हैं अल्फन अंदरैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मानता 13 सितंबर को जन्म दिवस है। शुभ अवसर पर दो बेटियां रजनी अपनी माँ को और देविका भी अपनी माँ को और सोन सोन यानी दामाद शूर्त इदमा अपनी सास को यानी सोन मुदर को जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहे थे। आगे चलते हैं तो अल्फन अंदरैन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मानदा 13 सितंबर के जन्मदिवस है। शुभ अवसर पर प्यारा पतिदेव श्रीमान चांद रघुनाथ प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ दिल की गहराइयों से ये शानदार गीत इस तरह से।

मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं, जबकि अल्फानंद रेन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मानदा 13 सितंबर जन्मदिवस है। शुभ अवसर पर प्यारा पतिदेव अपने प्यारी धर्मपत्नी को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश कर रहा था। अगला सॉन्ग है अल्फानंद रेन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मानदा 13 सितंबर के जन्मदिवस है। शुभ अवसर पर प्यारा पति देव अपनी प्यारी धर्मपत्नी को शुभकामना प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ। क्या ख्याल है

वाह रे मंदिर कपूर जी, आल्फानंद रे इनके रहने वाले श्रीमती खिसरा रघुनाथ, आज 15 सितंबर को इनका जन्म दिवस है। शुभ अवसर पर प्यारा पतिदेव श्रीमान चांद रघुनाथ अपनी प्यारी धर्मपत्नी को बधाई शुभकामना प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ पेश कर रहा था ये गीत। चलो प्रोग्राम में आगे फरमाइश है। आल्फानंद रे इनके रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ आज 15 सितंबर जबकि मानदाक है उनकी जन्मदिवस है। शुभ अवसर पर प्यारा पतिदेव श्रीमान चांद रघुनाथ हार्दिक बधाई शुभकामना के साथ ये शानदार गीत है।

नीले गगन के तले फरमाइश पेश है अल्फ़रान दरेन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की। आज मानदा 13 सितंबर है, जन्मदिवस है। शुभ अवसर पर प्यारा पति देव श्रीमान चांद रघुनाथ अपनी प्यारी धर्मपत्नी को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किए। अल्फ़रान दरेन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मानदा 13 सितंबर है तो उनका जन्मदिवस है, और उनके प्यारा पतिदेव हार्दिक बधाई शुभकामना अपनी प्यारी धर्मपत्नी को पेश कर रहा इस तरह।

वही तो नहीं, वाह क्या बात है। अल्फा नंदर एन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ आज मादा फेर दी, सितंबर को इनका जन्मदिवस है। शुभकामना के साथ प्यारा पति देव श्रीमान चांद रघुनाथ ये गीत पेश किए, दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई शुभकामना पेश करते हुए। अगला सॉन्ग, वाह क्या बात है भैया रघुनाथ। अल्फा नंदर एन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ आज मादा फिर 3 सितंबर को इनका जन्मदिवस है, शुभकामना के साथ। प्यारा धर्मपति पतिदेव अपने प्यारी धर्म पत्नी को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश करते हुए ये शानदार गीत एक बार फिर है महेंद्र कपूर जी।

वाह क्या बात है, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाए हैं, जबकि आज अल्फा अंदर है इनके रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ जी की मानदा फिरती सितंबर जब है जन्मदिवस है, शुभ अवसर पर प्यारा पति देव श्रीमान चांद रघुनाथ अपनी प्यारी धर्मपत्नी को शुभकामना के साथ हार्दिक बधाई पेश करते हुए ये सॉन्ग पेश किए फौन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। श्रीमान चांद रघुनाथ को और खिसला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फौन हिंदुस्तानी रेडियो खिसला जी को जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई दे रहा है और भैया चांद रघुनाथ को भी धन्यवाद दे रहा है और दोनों बेटियां को यानी रजनी को और देविका को भी बहुत बहुत धन्यवाद भेज रहा है और सोन जोन यानी दामाद श्रीमान शूर्त इदमा को बहुत बहुत बधाई देते हुए लीजिए फौन हिंदुस्तानी रेडियो। बहुत समय नहीं बचा है तो लीजिए ये गीत चलाया जा रहा है फौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा।

हर जन्म में हमारा मिलन अल्फरांदर रहन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की आज मानदा 13 सितंबर के 70वां जन्म दिवस है। प्यारा पतिदेव श्रीमान चांद रघुनाथ अपनी पत्नी को, दो बेटियां रजनी अपनी माँ को और सोनजोन यानी दामाद शूर्त इदमा अपने सास को और बेटी देविका माँ को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी हार्दिक बधाई पेश किया जा रहा है।

आज अल्फानंदर एन के रहने वाली श्रीमती खिसला रघुनाथ की मादा 15 सितंबर जब है जन्मदिवस है। ख़ास मौके पर उनकी दो बेटियां रजनी की तरफ से माँ को और सोनिया ने दामाद शूर्त इदमा अपने सास को और देवी का बेटी अपनी माँ को और भैया चांद रघुनाथ श्रीमान चांद रघुनाथ अपनी प्यारी धर्मपत्नी को और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से दामाद शूर्त इदमा को देविका जी को रजनी जी को और खिसला जी को भैया चांद रघुनाथ को हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया जा रहा है।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दोस्तों इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जाजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी का नाम है साजन और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

करने को ये सॉन्ग थे और हम चलते ही दोस्तों आप लोग जानते ही यार नेक तक का सोन और वो कुछ और थे और ओल्ड एंड गोल्ड और कुछ है दोस्तों और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है लेकिन हम चलते हैं यार नेक तक का जोन और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे मोफिक राम है साजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और मैं दी मुगेश का ये सॉन्ग है।

दोस्तों मैं दीवाना मस्ताना और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है मैथिली मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

और दिल भी हम आपको दिया है और आप भी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांज करते हैं तो हम चलते हैं, मौफी का नाम है भरोसा, निकट होंद द्रियन सस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: लोग खैर क्यों ना जुल्मी ओ जालिम ले जाना होते।
1: यस दोस्तों, तो ये कुछ बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निकट द्री एंसेस्टर का, पद्माश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

ऐ दिल मुझे भी आ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

0: Is Movie, our film ke naam hai Andaz 1949 ka. Ye song hai jisme Dilip Kumar ne kaam kiye hai aur Rajinder Kumar ne kaam kiye hai. Now saath ke saath mein
1: toote na dil toote na.
0: Hum chalte hai ek aur song. आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं. हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जैसे दूर कोई गाए धुनिए।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

खिलते फूलों जैसे लबों पर हंसी हो, ना कोई गम हो ना कोई बेबसी हो, सलामत रहे ज़िंदगी का यह सफ़र, जहां आप रहें वहां बस खुशी ही खुशी हो। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आपके लिए फिर से प्रोग्राम लेकर आ गई हूं, जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान, यानी सपने। सपने हमें क्यों आते हैं और सपनों का मतलब क्या है।

मैं आज आपको जिस विषय के बारे में बताऊंगी उसका नाम है शकुन विचार। शकुन यानी जो शगुन भी कहते हैं, शकुन भी कहते हैं, और उसका शुभ लाभ भी है और अशुभ लाभ भी है। शकुन विचार अर्थ, वास्तव में होरा गणित शकुन का मिश्रित रूप ही संहिता शास्त्र है। कलांतर में संहिता में से दो भेद और बताए गए, शकुन और प्रश्न। शकुन का फल विश्वास करने पर ही मिल सकता है। जीव ने पूर्ण जन्म में जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म किए हैं, गमन के समय पशु पक्षी उस जीवन के कर्म के पाप को प्रकाशित करते हैं, यही शकुन है। ऐसा नहीं है कि शकुन शास्त्र केवल यात्रा काल तक ही सीमित है। शकुन के अनेक आयाम हैं। घर में भी शकुन हो सकते हैं और ग्राम में भी शकुन हो सकते हैं। जिस प्रकार पेड़ पौधे एक औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि का हर जीव प्रकृति की विचित्रता और विशेषता लिए हुए है। परंतु प्राचीन शास्त्रकारों ने काली चिड़िया, कुत्ता, कौवा, गिदड़ी, इन पांचों को शकुन शास्त्र में रतन की संख्या दी गई है और उन्होंने इन पांचों के सरस्वती, यज्ञ, गरुड़, चंडी और शेदूती का अधिष्ठात देवता बतलाया गया है। शकुन उस परिणाम का सूचक है जो मनुष्य को निकट भविष्य में प्राप्त होने वाला है। शकुन मनुष्य के लिए देवीय प्रेरणा है जो शुभाशुभ फल के बीज के रूप में प्रस्फुटित होती है। यथार्थ में शकुन शब्द का अर्थ नामकरण पक्षी को अक्षय मानकर ही हुआ है। कुछ अकस्मिक घटनाओं को जो किसी शुभाशुभ घटना की घातक हैं उन्हें ही शकुन कहते हैं। सुनने वालों, ये मैंने आपको

0: शकुर का अर्थ बतलाया है।
1: पत्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना ये सुरीनाम के महान गायक कलाकार श्रीमान रामदेव चेतू जी की आवाज़ में था। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। अब शकुन हो तो क्या करें, यात्रा करने वाले व्यक्ति को यदि गमन करते समय कोई अपशकुन हो तो लौटकर हाथ पैर धोकर जल का आचमन करके किसी पीपल, बड़, गुलर अथवा आम के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए और प्राणायाम करते हुए अपने ईष्ट देवता का मंत्र जाप करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण यात्रा आरंभ करनी चाहिए। यदि दूसरी बार भी विपरीत शकुन हो तो वापस आकर किसी दूध वाले पेड़ के नीचे बैठकर प्राणायाम करते हुए ईष्ट देवता का मंत्र जपना चाहिए और पूर्ण यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। यदि तीसरी बार भी अनिश्चित शकुन दृष्टि गोचर हो तो उस दिन के लिए यात्रा का त्याग कर घर लौट जाना चाहिए। जिस व्यक्ति से घर से निकलते ही कोई शकुन होता है तो शीघ्र ही अपने स्वभाव के अनुसार शुभ या अशुभ फल देता है। गमन करते समय जो शकुन होते हैं, यदि प्रवेश के समय भी वही शकुन हो तो उसके बाद दूसरी बार गमन करते समय भी वही शकुन हो तो बिना विश्राम के ही बहुत शीघ्र बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इसके विपरीत गमन करते समय शुभ और प्रवेश करते समय अशुभ शकुन हो तो दूसरी बार गमन करते समय शुभ शकुन भी कठिनाई से सफलता देते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। शगुन भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ अशुकुन और अशुभ शकुन। अब मैं आपको पहले शुभ शकुन के बारे में बतलाऊंगी सुनने वालों। जिस प्रकार अशुभ शकुनों से हानि, असफलता, अधिपतन आदि की संभावना समझी जाती है, उसी प्रकार शुभ शकुनों के विषय में लाभ, सफलता, सौभाग्यवर्धन आदि माना जाता है। कुछ शुभ शकुन तुरद्यानो हसदा हुसन मिले इस्तो की शकुन चंगेरा है। इसका मतलब है सुनने वालों, अगर हम कहीं जा रहे हैं और कोई हंसता हुआ व्यक्ति मिल जाए और इससे अच्छा शगुन और क्या होगा। सौभाग्य चिन्ह, पुत्रवती स्त्री, सुंदर स्त्री, कुमारी, स्वस्थ बालक, बनिया, पगड़ीधारी, ब्राह्मण, ज्योतिषी, विद्वान, धोबी, शिक्षक, घोड़ा, तांगा, रथ, गाय, मोर, बैल, भेड़, हिरण, कबूतर, बकरा, सांप, फलों का ढेर, फलों से लदा ठेला गाड़ी, ईख, पुष्प, तंबूल, गीली लकड़ी, दर्पण, नवीन वस्त्र, दूध, दही, दुर्वा, मांस, शराब, घी, पताका, खाद्य सामग्री से भरा बर्तन, दीपक, नगाड़ा, वाद्य, जलयुक्त, कलश, छाता, देव प्रतिमा, शुभ वचन, गोबर, शुभ समाचार, जय घोष, वेद ध्वनि, पुस्तकें, पूजन सामग्री, खिलौने, आनंददायक सामग्री, सुगंधित द्रव्य पदार्थ, खेल, वस्त्राभूषण, श्वेत माल्य सहित, मल या कूड़े आदि से भरा हुआ पात्र लिए स्त्री, गुड़ की भेली लिए हुए स्त्री या पुरुष, नारियल, छुआरे, सुपारी के लिए हुए, मिठाई, मधु, धृत, पेठा लिए हुए, ध्वजा पताका, पंखा, चावल, पका हुआ अन्न, सरसों, चंदन, शंख, मिट्टी, बिना धुएं की अग्नि, कमल, रतन, पशुओं का समूह, नवीन शाक, श्वेत वर्ण, स्वस्थ वृद्ध पुरुष, ईश्वर भगत, नई भरी हुई रजाई, रंगे हुए वस्त्र लिए या पहने हुए आदमी, सेहरा धारण किए हुए दूल्हा, सांड गर्जन करता हुआ हंसता खेलता बालक, हरे पत्तों की बंदरवाल, हरी धूप, सिंहासन, कपूर जलती हुई अगरबत्ती, मछली, वीणा, काजल, भुजा, मुर्दे के पीछे ले जाने वाला खाली कलश, राख, लकड़ी, राज, कीट, कपास, खुले हुए बाल, काली वस्तु, लोहा, वृक्ष की छाल, काला तेल, चमड़ा, दाल, विष्ठा, नमक, राजा, वैश्य, भोजन करते हुए, पूजा करते हुए, गांव के बाहर जलती लकड़ी, राख, पत्थर, सन्यासी के वस्त्र, बाल, धान की तुष, हड्डी, मांस। सुनने वालों, ये सब शुभ शकुन है। अगर ये चीज़ें यात्रा करने हम जा रहे हैं, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये सब शुभ शकुन माने जाते हैं।

सुनने वालों, अब हम एक गाने की ओर बढ़ेंगे। गाना सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे शुभ है तो लाभ है तो हानि भी है, वैसे ही अगर शुभ शकुन है तो अशुभ शकुन भी है। तो गीत के बाद मैं आपको बताऊँगी अशुभ शकुन के बारे में। सुनने वालों,

सुनने वालों, जो आप लोगों ने अभी ये गीत सुना वो है सूरीनाम के प्रसिद्ध गायक देसी रघु सिंह जी की आवाज़ में। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, जब आपने शुभ शकुन सुने, अब थोड़े अशुभ शकुन भी हैं, मैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे चोर, पागल, लपट, सन्यासी, ब्रह्मचारी, रोगी, लंगड़ा, नपुंसक, काना, भिखारी, जटाधारी, क्रोधी, गधा, ऊंट, भैंसा, रुदन की ध्वनि, गर्भवती या विधवा स्त्री, धूर्त, लकड़ी बेचने वाला, नाई, सुनार, लोहार, तेली, चमार, कुम्हार, मोची, शिकारी, अस्त्र शस्त्र, हथकड़ी, अंग फड़काना, ठोकर खाना, बर्तन का गिरना, मुंडे सिर वाला, बिल्ली, बिल्ली का रोना, कुत्ता, कुत्तों का लड़ना, कुत्तों का रोना, कुत्तों का कान फड़काना, बिल्ली का रास्ता काटना, बांझ गायें, काला सर्प, काला पान, कौआ, वानर, तेल से भरा घड़ा, तेल, छाछ, काला नमक, गुड़, झाड़ू, काली बर्तन, हंडिया, रस्सी, छींक, दुर्वचन, रुधन, कूड़ा करकट, दुर्घटना, बाल छाए रहे, बिजली, कड़के, दिन में तारे टूटना, मेहतार, खाली डलिया लिए हुए, नौ स्त्रियां या तीन ब्राह्मण, दो वैश्य, एक शूद्र, कोई मनुष्य चिकने वस्त्र पहने हुए, तिलक रहित ब्राह्मण, हिजड़ा या हिजड़ी, केशवहीन, अपंग, नंगा, तेल लगाए हुए रोती स्त्री, शराबी, काला आदमी, काली माला धारण किए हुए आदमी, कपाल, कपाल में खोपड़ी, जलती चिता, कांटेदार वृक्ष, भस्म, पत्थर लाता हुआ, पत्थर पर बैठा हुआ पुरुष, गधे को छोड़कर अन्य प्राणी पर योनि से गमन करें।

सुनने वालों, अब हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक गीत सुनाऊंगी और गीत के तुरंत बाद मैं आपको बताऊंगी शकुन किस प्रकार फल देता है।

परी हमारे लाला ने जो इसका काम तूने किया, डटते रहो बांटते रहो जो लाख साल।

सुनने वालों, ये जो भी आपने गीत सुना ये सुरीनाम के मशहूर गायक पंडित स्वामी प्रसाद जी की आवाज़ में था और वो एक बहुत अच्छे कलाकार थे और बहुत उनके गीत मशहूर हुए सुरीनाम में। और इनकी बहन श्रीमती सम्राजी लक्ष्मण जी भी सुरीनाम और हॉलैंड की जानी मानी गायिका रह चुकी हैं। उन्होंने भी बहुत सारे गीत गाए जो बहुत मशहूर हुए सुनने वालों। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, शकुन किस प्रकार फल देता है। समूह का फल, जो लोग समूह में जा रहे होते हैं उसका विचार समूह के प्रधान व्यक्ति के अनुसार किया जाना चाहिए। शकुन निकट हो, शकुन प्रायः निकट होने पर ही फल देते हैं। बहुत दूरी पर होने वाले शकुन प्रायः फलीभूत नहीं होते। शकुन दाहिने हाथ की ओर, जो शकुन हमारे दाहिने हाथ की तरफ होने पर शुभ रहता है और हमारे दाहिनी ओर की नसा छिद्र से श्वास सूर्य स्वर चल रहा है तो शकुन का शीघ्र ही उत्तम फल मिल जाता है। इसके विपरीत बाईं ओर से स्वर चंद्र स्वर चल रहा हो तो शकुन का फल भी विपरीत मिलता है। नर शकुन, पशु पक्षियों में नर के शकुन को श्रेष्ठ माना जाता है। स्त्री अथवा नपुंसक होने पर मंद फल मिलता है। विभिन्न दिशाओं में बलवान शुभ, पूर्व में बलवान मोर मोदकी सिंह ध्वनि पित्रा हिरण कुकड़ा कंठ फोड़ा हाथी मुर्गा आदि। दक्षिण में बलवान क्रूर शब्द वाले पशु पक्षी जैसे कौवा रीछ कबूतर उल्लू गिदड़ी हरियल तेलगुरु सियारी पिंगला आदि। सुनने वालों, ये सब पशु पक्षियों के नाम हैं। पश्चिम में बलवान कुकुरी गाय बगुला बिलाव हंस चातक तीतर लोमड़ी खरगोश वादों का बजना कुत्ते की ध्वनि सारस आदि। उत्तर दिशा में बलवान घोड़ा चूहा कोयल नीलकंठ शंख कुटुकू बढ़िया हिरण चातक पुण्य वचन घंटा सिंह की ध्वनि आदि।

मंगल अरु इतवार दिन और शनिश्चर लेन चरकारज को मिलते हैं सूरज के दिन तीन। तीन दिन सुबह प्रातः उठते समय सूर्य का दायां स्वर चलना चाहिए। उठने से पहले अपनी दाई हथेली को 5 बार चूमकर इससे अपने दाएं अंग को स्पर्श करके सर्वप्रथम उठने के लिए अपना दायां कदम पहले भूमि पर रख कर उठें। बाकी दिनों में चंद्र स्वर बाएं हथेली तथा बाएं पांव का प्रयोग करें। यह श्रमशाली और प्रसन्न रहते रहने का एकमात्र रामबाण है। सुनने वालों, आप तो सब जानते होंगे कि जब हम सुबह उठते हैं तो एकदम से ना उठें, पहले हम अपना दायां पैर आगे रखें, फिर हथेली को चूमें और फिर सारे अपने शरीर को उससे स्पर्श करें। तो ऐसे हमें उठना चाहिए, एकदम भाग कर नहीं उठना चाहिए। नीचे ऊंचे शकुन, निकट और नीचे हुए शकुन शीघ्र फलदायी, ऊंचे और दूरी पर होने वाले शकुन विलंब से फलित होते हैं। सूखे पेड़ पर शकुन, वही पक्षी यदि सूखे पेड़ पर शकुन देता है तो अपशकुन फलदायक होता है। महल मंदिर पर शकुन, जब महल मंदिर मंगल द्रव्य अथवा किसी रमणीय स्थान पर बैठकर कोई पक्षी शकुन देता हो तो रस, दूध, फल, मधु अथवा पुष्प युक्त वृक्ष पर शकुन देता हो तो शेष फल मिलते हैं। दिन रात्रि के शकुन, दिन के शकुन अपने काल में ऊंचे स्थान पर बैठे हो, रात्रि के शकुन जल के समीप बैठे हो तो बलवान होते हैं। स्त्री से पुरुष बलवान, प्राणियों में क्रमशः नपुंसक से स्त्री और स्त्री से पुरुष बलवान होता है। गांव में वन के शकुन का होना और वन में गांव के शकुन का होना, रात्रि में दिन का शकुन होना और दिन में रात्रि के शकुन का होना घर नहीं है। सुनने वालों, अब मैं आप लोगों के लिए गाना चलाती हूँ, आप सब गाना सुनिए।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने जो ये गीत सुना, ये गीत था सूरीनाम के मशहूर गायक श्रीमान रामदेव चेतु जी की आवाज़ में। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। नदी के दूसरे किनारे पर शकुन, रति मुक्ति, रोग पीड़ित, त्रासित, झगड़ा और मांस की अभिलाषी, नदी के दूसरे किनारे बैठे पशु पक्षियों के शकुन भी घारे नहीं होते। आठ दिशाओं के 32 भेद, पूर्व और अग्नि कोण के बीच कोषाध्यक्ष, लोहार, तपस्वी, अग्नि कोण तथा दक्षिण, कारीगर, भिक्षु, नंगी स्त्री, दक्षिण तथा नेत्रस्थ, हाथी, गोप, धार्मिक लोग, नेत्र तथा पश्चिम, उधम स्त्री, प्रसिद्धा स्त्री, चोर, पश्चिम तथा वावेव, कलाल, चिड़ीमार, हिंसक जीव, बायव तथा उत्तर, विष घातक वाले तथा इंद्रजाल जानने वाले, उत्तर तथा ईशान, धनवान, ज्योतिषी, माली, ईशान तथा पूर्व, वैष्णव, चरक, बौद्ध भिक्षु, घोड़ों की रक्षा करने वाला, आठ दिशाओं में राजा, राजापुत्र, सेनापति, धनवान, जासूस, ब्राह्मण, हाथियों के समूह का स्वामी, पूर्वादि चार दिशाओं में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, पुरुष शब्दवाचक तथा स्त्री संज्ञक, बाईं ओर से शुभ, गिद्धड़ी, पातकी, कलाकार, छछुंदर, चपकिया, शगरी, कोयल तथा पुरुषवाचक पक्षी, दक्षिण में शुभ, बंदर, छीक मृग, मोर, छिरकट, रोरो मृग, बाज, स्त्री संज्ञक, नाम लेना, दर्शन करना, अग्रभाग में शब्द करते शुभ, बकरा, मोर, कीर्तन, सम्मुख आना अशुभ, नेवला, नीलकंठ, गिरगिट,

ये जो आपने गीत सुना है, ये गीत श्रीमान दयाराम जी ने और महेंद्र गुदर जी ढोल पे थे, श्रीमान महेंद्र गुदर जी हारमोनियम पे थे दयाराम भाई, और ये हॉलैंड के इतनी मशहूर जोड़ी कि सब इनको जानते हैं, जैसे राम लक्ष्मण जी की जोड़ी, एक के बिना दूसरा अधूरा था। समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हमारे साथ आज देने वाले हैं चंद्रा जी और हमारे पैनल के पीछे बैठे हुए हैं राजेंद्र सिंह जी। कार्यक्रम जो यहाँ से अब प्रारंभ होता है।
1: संजय जी, और आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा होने वाला है, और कार्यक्रम जो है श्री गणेश के एक दंत होने का वृतांत रहेगा कि एक दंत कैसे हुए वृतांत, उस प्रकार में पूरी बात रहेगी। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, यानी राजेंद्र सिंह का नमस्कार। सुनते हैं आगे संड्रा जी क्या कहना चाहती
2: है। हेलो सुनने वालों, आप सबको मेरा नमस्कार।
0: राजेंद्र जी, हर सप्ताह की तरह जो हम गीत रखते हैं कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डड़े, और वो गीत को हम चला देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को भरे। तो राम जी सबका बेड़ा पार ही करते हैं, किसी का मन भी उदास नहीं रहता है। जब ये गाना हम चला लेते हैं, ये भजन जब सुनते हैं सब लोग, तो किसी का मन भी उदास नहीं रहता। तो क्यों ना संजय जी हम आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़े।
1: एकदम एकदम राजेंद्र जी, आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ना, क्योंकि आज का विषय जो रखा गया है गणेश जी।
0: हाँ,
1: और गणेश जी के सबसे मूल्य बात इसमें क्या है राजेंद्र जी?
0: मूल्य बात इसमें यह है कि श्री गणेश जी के एक दंत होने के वृतांत है इसमें।
1: एक दंत होने का वृतांत।
0: हाँ, कि एक दंत कहाँ गया और एक दंत कैसे हुआ
1: ऐसा। तो सौंदरा जी, आपको पता है कि गणेश जी का एक दंत क्यों?
2: जी मुझे तो विस्तार से ये बात नहीं समझ में आ रही है, आप ही बता दो।
1: ये तो आज हम सबको सुनना है, सुनते रहना, क्योंकि ये संदेश जो आज है कि गणेश जी का एक दंत, उसके बारे में काफ़ी जानकारी भाई राजेंद्र जी जो लेकर यहाँ उपस्थित है, और हमारे विशेषज्ञ लोग जो इसे खोज करके हम सब के लिए रखते रहते हैं। तो हम सब अभी उस ओर राजेंद्र जी क्यों ना हम सब छलांग लगा देते हैं।
0: हाँ जरूर। जब जमदग्नि पुत्र ने 21 बार पृथ्वी को अपने फरसा मात्र से क्षत्रिय विहीन किया था, तभी केवल एक परशु से क्षत्रिय विहीन किया था 21 बार पृथ्वी को, तभी भगवान शंकर ने उनका नाम परशुराम रख दिया। उस समय उनके ऊपर देवता, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर एवं देवियों आदि ने पुष्प की वर्षा की। हर्ष के कारण स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और सर्वत्र हरिनाम का कीर्तन होने लगा। तदुपरांत परशुराम कृत यज्ञों से यह समस्त धरती तल पूर्ण रूप से तृप्त एवं संपन्न हो गई। उसके बाद परशुराम जी ने भगवान आशुतोष एवं जगजननी पार्वती जी के दर्शन की इच्छा की और वे शीघ्र ही कैलाश शिखर पर पहुँचे। उस समय स्वयं श्री गणेश्वर द्वार पर विद्यमान थे। परशुराम ने उनके पास जाकर कहा, भ्राता, मैं इस समय परम प्रभु और मातेश्वरी उमा के दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने वसुंधरा को लीला पूर्वक ही क्षत्रिय भीन कर दिया है। उसमें कार्तवीर्या और सुचंद्र जैसे महाकर पराक्रमी और समर सिद्ध भूपाल मारे

0: जा चुके हैं। यह सब कार्य शिव की कृपा से ही पूर्ण हुआ है, इसलिए भी उनके दर्शन करना बहुत आवश्यक है। हे भ्राता, हे गणेश्वर, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? देखो, मैंने उन्हीं परमपिता शिवजी से विविध विद्याओं को प्राप्त किया है और दुर्लभ शास्त्रों को अध्ययन करता हुआ उन्हीं के सानिध्य में पारंगत हुआ हूँ। उन्हीं के जगतनाथ और अपने गुरुदेव भगवान शंकर के दर्शनार्थ मैं अंतापुर जाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। परशुराम जी की बात सुनकर गणेश्वर जी ने कहा कि आपको अभी यहीं ठहरना चाहिए, शीघ्रता में कभी कोई कार्य नहीं बनता। फिर नीति भी यही कहती है कि देवता, गुरु और राजा के सानिध्य में जाने से पूर्व उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त कर ले, जब वे दर्शन देना स्वीकार कर ले तभी वहाँ जाएं।
1: तो राजेंद्र जी, ये है कि अभी परशुराम जी और वृतांत चल रहा है, अभी हम सब एक दंत की ओर बढ़ना।
0: हाँ,
1: तो क्यों ना हम एक गीत चला देते हैं?
0: हाँ, क्यों नहीं, जरूर।
1: क्योंकि शांता जी ने अपने पिटारा सद आज दिखिताल भर के और हम सब के लिए भेज दिए हैं।
0: हाँ,
1: तो देखते हैं, क्योंकि गीत में भी ये बात हो जाता है राजेंद्र जी, कभी काल के हम सब यहाँ पर से भी गीत चला देते हैं जिनका संदेश कुछ और होता है और बाद में पछताना होता है, पर शांता जी हर बार इतना समय निकाल करके सभी गीतों पे और ध्यान देते हैं। तो देखते हैं कौन सा गीत इस बार शांता जी हम सब के लिए तैयार करके रखे।
0: हाँ, जरूर।

0: जय देव गणेश जी की इतनी सुंदर प्रस्तुति हुई कि सब लोगों का मन हर्षित और उल्लासित हो गया, खासकर सांड्रा जी का। और क्यों ना आगे बढ़ा जाए,
1: एकदम राजेंद्र जी आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हमें भी ये बात को है कि एक दंत गणेश जी का क्यों, और अब सुनेंगे तो फिर पता चलेगा।
0: हाँ, फिर उनकी अनुमति, जैसे उन्होंने बोला कि अभी आप थोड़ा रुक जाइए, तो फिर मुनिनाथ बोले कि आप तो स्वयं नित्यज्ञ और धर्मज्ञ है, आपको तो अभी द्वार पर रुकना ही चाहिए। देखो मेरे नियुक्ति युक्त वचन सुनो। गणेश जी ने परशुराम जी को बोला कि अभी आप सुनो, मेरे कुछ वचन भी सुनो, नियुक्ति युक्त नीति युक्त, यानी कि कुछ सही बातें हैं। रहस्य स्थल में अपनी पत्नी के साथ विद्यमान हुई पुरुष के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पत्नी के साथ एकांत में स्थित व्यक्ति को देखना अत्यंत पाप का भागी होना है। इस दोष के कारण कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। तो बोले गणेश जी अपना उनको सुनाने लग गए वृतांत। द्विज श्रेष्ठ, यदि उस नरक में अल्पकाल ही रहना पड़े, अल्पकाल मतलब कम समय में अगर रहना पड़े, तब भी कुछ ठीक रहे, परंतु वहाँ पहुँचने वाला पापी तो जब तक विश्व में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक उसे उसी नरक में पड़ा रहना होता है, परंतु यह फल उस स्थिति में और भी दृढ़ हो जाता है जब वह अपने पिता, गुरु अथवा स्वामी आदि की ओर देखता है, तब अधिक पतित हो उठता है। ऐसा पुरुष अपने 7 जन्म पर्यंत स्त्री से विच्छेद न करने के लिए बाध्य रहता है। यदि तथ्य बहुत चर्चित हो जाता है तो लोग उसे और पापी कहने लगते हैं। हे द्विज, यह ऐसे पाप हैं जिनके कारण प्राणी को चंद्र सूर्य की स्थिति रहने तक नरक में निवास करना होता है। विशेषकर जो अप गुरुजनों आदि के रहस्य स्थान में बिना आज्ञा जाता है, उसे वही पाप अधिक दुखदायी होते हैं। गणेश्वर के यह वचन सुनकर भृंगु नंदन को हंसी आ गई और क्रोध दोनों हुए। वह कुछ गंभीर एवं निष्ठुर वचन कहने लगे, गणेश्वर तुम्हारे द्वारा तो आज मैं अत्यंत अद्भुत और अपूर्व वचन सुन रहा हूँ। पाप की ऐसी परिभाषा तो मैंने कभी भी नहीं सुनी। हे भ्राता, काम विकार का दोष हो चाहे न हो, किंतु शिशुतुल्य व्यक्ति जिसे कभी कोई विकार व्याप्त नहीं करता, उसे कभी कोई दोष नहीं लगता। फिर भी यदि कोई पाप होगा तो भी उससे मैं ही तो प्रभावित होऊंगा, आपका उसमें क्या प्रयोजन हो सकता है, इसलिए मुझे तुरंत ही प्रभु की अंतापुर में जाने दो, रोको मत। गणेश्वर बोले, मुनिनाथ, जो पुरुष अज्ञानंधकार से आच्छन्न होता है उसे ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि आप में भी ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ विशिष्ट ज्ञान की संपन्नता है, तो मुझ मंदमति वाले का भी निवेदन मानने की कृपा करें। इस प्रकार से गणेश जी कथा अपनी सुना रहे थे कि कैसे दर्शन करना चाहिए, क्या करना चाहिए।
1: तो राजेंद्र जी, ये तो क्योंकि हप गणेश जी ये कहने वाले कि हे मुनिनाथ, पर मुनिनाथ की ओर बढ़ने से पहले
0: हाँ,
1: क्यों ना हम
0: एक सुंदर सा गणेश जी का भजन चला देते हैं।

0: आए गजानन गौरा जी की अंगना, इसका आप मतलब समझते हैं संडर जी क्या मतलब हुआ? गजानन आए, गणेश जी आए गौरा जी की अंगना।
1: गौरा जी, गौरा जी उसकी माता है, गजानन की माता है।
0: और आए आंगन में,
1: और लाए अपने आंगन में गणेश जैसा पुत्र।
0: हाँ
1: मैं समझ रही हूँ,
0: बहुत समझती,
1: इतनी ना समझ नहीं हूँ।
0: तो बढ़ते हैं आगे, क्यों नहीं समझदारी से काम लिया हुआ, क्यों ना आगे बढ़ाया जाए।
2: अच्छा
0: तो चलो बढ़ते हैं फिर
2: वृतांत के ओर बढ़ेंगे।
0: हे मुनिनाथ, निर्गुण एवं निर्लिप्त पुरुष में शक्तियों का अभाव रहता है, किंतु जब उसे सृजन की इच्छा होती है तब वह स्वयं ही शक्ति में आश्रय लेकर सगुण हो जाता है। हे महामुनि, संसार में उत्पन्न समस्त देहधारी भोग के योग्य एवं प्रकृति को केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। प्राकृत यानी प्राकृतिक रूप से, जैसे
2: प्राकृतिक यानी कि नेचुरल से बोल देना,
0: नेचुरल या
2: नेचुरल,
0: उनके दर्शन भी तुरंत ही नहीं हो जाते। उस समय गणेश जी ने परशुराम को रुकने के लिए कहते हुए अनेक युक्तियां प्रस्तुत की, परंतु परशुराम जी तो भीतर जाने के लिए ऐसे उतावले हो रहे थे जैसे सैंड्रा जी इंडिया जाने के लिए हो रही है, तो उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए गणेश्वर की बात अनसुनी करके भीतर प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया, यह देखकर गणेश जी ने उन्हें पुनः रोका। परशुराम बोले, अब तुम बिना कुछ बाधा डाले द्वार के मध्य से हट जाओ और मुझे जाने दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। देखो अभी तुम बालक हो, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, तुम इससे भी अनजान हो कि मुझ में कितनी शक्ति है। तो गणेश जी बोले, आप कैसे भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। जब तक मुझे माता पिता की इस विषय में कोई आदेश नहीं मिलता, तब तक आपको यहीं रोके रखना मेरा कर्तव्य है। यदि यहाँ नहीं रुकना चाहते हो तो लौट जाओ, बाद में दर्शन करने आ जाना।
2: ऐसा किया गणेश जी ने और परशुराम जी के साथ।
0: हाँ, गणेश जी ने परशुराम जी को रोक के रखा ना वहाँ गेट पे।
2: जी,
0: परशुराम ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए गणेश्वर को धक्का देकर भीतर जाने लगी। तभी गणेश जी ने उनको पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। इससे परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रहार करने के लिए परशु को संभाला, निकाला परशु। तभी वहाँ स्वामी कार्तिकेय जी आ गई। उन्होंने कहा, मुनिवर यह क्या कर रहे हो, गणेश्वर तुम्हारे गुरु भगवान शंकर का पुत्र है, इसलिए गुरु ही समान है। यदि तुम इसका वध कर बैठते तो क्या शिवजी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकोगे, यानी शिवजी की और पार्वती जी की, शिव एंड शिवा। परशुराम ने फरसा हाथ से फेंक दिया और बोले, मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मूढ़ बालक, मैं अब तक तुझे गुरुपुत्र का सम्मान देता रहा हूँ, किंतु एक तो है कि अपना हट ही नहीं छोड़ना चाहता। गणेश बोले, मुनिनाथ इस समय आप भीतर नहीं जा सकते, इस क्रोधावस्था में तो तुम्हें शिव शिवा के समक्ष जाने का अधिकार भी नहीं। देखो इस प्रकार वहाँ जाने से अनिष्ट की भी संभावना हो सकती है।
2: तो क्यों ना हम एक पहले गीत आगे सुन लेते हैं राजेंद्र जी।
0: हाँ जरूर, तो आगे बढ़ते हैं। मेरे विचार में तो तुम्हारा इस समय वहाँ यहाँ से लौट जाना ही श्रेयकर होगा, तो बढ़ते हैं गीत की ओर,
2: क्योंकि अब तो लौटना उसे परशुराम जी को
0: लौटना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा
2: ये तो बाद में पता चलेगा,
0: ये तो चलेगा कुछ देर में पता।

0: रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तो गणपति तो रिद्धि सिद्धि के दाता है ही, तो क्यों ना संजय जी हम आगे की तरफ तरफ बढ़े।
1: जरूर वृतांत आगे बढ़ाना है, और वृतांत जो हम सबके आज का विषय जो रखा गया है कि गणेश जी का, गणेश भगवान को क्यों और एक दंत कहा जाता है।
0: हाँ।
1: तो अभी तो हम सब वहाँ पहुँचा ही नहीं।
0: हाँ, तो वहीं पहुँचने का चल रहा है, परंतु परशुराम मानते ही न थे। जैसे उनको वहाँ पे रोका, वो नहीं मानते थे। उन्होंने क्रोध पूर्वक गजानन को धक्का देकर हटाया, उसके फलस्वरूप गजानन गिर पड़े और शीघ्र ही संभल कर उठ बैठे। उन्होंने फिर भी अपने आप को क्रोध रहित और शांत बनाए रखा तथा परशुराम को पुनः रोक कर कहा, मुनिवर भलाई इसी में है कि तुम तुरंत यहाँ से लौट जाओ। हे प्रभु, बिना परमेश्वर शिव की आज्ञा के उनके अंतापुर में प्रवेश करने की आप में क्या शक्ति है? आप मेरे पिता के शिष्य होने के संबंध में मेरे भाई होते हैं और इस समय अतिथि भी हैं, इसलिए आपकी यह हठधर्मी सहन कर रहा हूँ, अन्यथा नहाय हम कार्तिवीरस्य भूपास्ते श्रद्ध जन्वता अतो विप्रान ज्ञानासी माम चा विश्वेश्वरम जमनम। मैं कार्तिवीर्य नहीं हूँ और न क्षुद्र जंतु रूप राजाओं का समूह ही हूँ जिन्हें आपने मार डाला था। हे विप्र, क्या तुम नहीं जानते कि मैं विश्वेश्वर भगवान शंकर का पुत्र हूँ? हे विप्र, अतिथि क्षण भर ठहरो और युद्ध से निवृत्त हो। क्षण भर व्यक्ति होने पर मैं तुम्हारे साथ उन परम पिता के समीप चलूँगा। गणेश्वर के वचन सुनकर परशुराम अट्टहास करने लगे और तब भगवान शंकर का ध्यान करके पुनः अस्त्र प्रहार करने का विचार किया। तभी गणेश जी ने धर्म को साक्षी करके योग विधि के द्वारा अपनी सूंड को करोड़ों योजन लंबी करके परशुराम जी को उनमें लपेट लिया और फिर उन्हें चारों ओर घुमाने लगे।
1: तो राजेंद्र जी, इसे थोड़ा से और सरनामी में बताओ।
0: हाँ, सरनामी में ये है कि जब गणेश जी वो नहीं माने, परशुराम जी ना माने ला,
1: हाँ,
0: तो फिर गणेश जी अपनी सूंड को लंबी करे।
1: सूंड माने?
0: सूंड मतलब जो
2: स्लरफ,
0: जो हाथी की सूंड होता है।
1: हाँ,
2: स्लरफ,
0: स्लरफ,
1: हाँ जी,
0: उसको लंबी करके और फिर परशुराम जी को लपेटे उसमें।
1: ऐसा?
0: और फिर वो घुमाए चारों तरफ, इधर हाँ, उधर उधर ऐसे घुमाए उसको। तो फिर परशुराम जी, अब परशुराम निरुपाय थे, अब परशुराम के पास कोई उपाय नहीं था, वो फंस चुके थे उनमें।
1: तो चलो एक पहले गीत की ओर, फिर ये वृतांत आगे बढ़ाया जाएगा।
0: हाँ, पहले गीत की ओर बढ़ते।

0: सुन लो बिनती नाथ हमारी। और इसके बाद बिनती तो सुन ही रहे नाथ सबकी, क्यों ना अब हमारा समय हो गया है। किस चीज का समय हो गया?
1: न्यूज और कमर्शियल का।
0: कमर्शियल
1: तो हम
0: कमर्शियल
1: सब न्यूज और कमर्शियल के और फिर उसके बाद में हम सब आ जाएंगे आपके साथ, जरूर सुनते रहना।
0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को फिर से कार्यक्रम की ओर लौटने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। बढ़ते आगे की ओर कि कैसे उस समय क्या रहा, तब फिर क्या हुआ। गणेश्वर के वचन सुनकर परशुराम हंसने लगे और बोलने लगे कि अब परशुराम निरुपाय थे, उनके पास कोई उपाय नहीं था। उनका क्रोध न जाने कहाँ लुप्त हो गया। जो वो गुस्सा कर रहे थे वो सब जब गणेश जी ने लपेटा सूंट में तो उनका गुस्सा खत्म। मान
2: गुस्सा खत्म
0: खत्म। हाँ, ऐसा कि ऐसे लपेटा कि गुस्सा खत्म हो गया।
1: और राजेंद्र जी जो कार्यक्रम को आगे ले जाने वाले, क्योंकि अभी तक तो जो हमारा आज का विषय है उसके बारे में आप कुछ कहे नहीं राजेंद्र जी।
0: हाँ,
1: तो धीरे धीरे हम सब उस ओर बढ़ते हैं।
0: उस ओर बढ़ते हैं। योगी राज गणेश्वर जी की सूंड में लिपट कर चक्र के समान घूमते हुए परशुराम स्तंभित और असहाय हो गए थे। उनकी समझ में ना आया कि वह सब क्या और कैसे हो रहा है। अनंत शक्ति निधान गणेश्वर ने परशुराम जी को सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सिंधु तथा भूलोक, भूलोक जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक के दर्शन कराए और फिर गहन समुद्र में फेंक दिया, जहां वे प्राण रक्षार्थ जल में तैरने लगे। प्राण रक्षार्थ का मतलब होता है कि गणेश जी ने जैसे उनको सूंड में पकड़ा और लंबी सूंड करी तो वो सब जगह का दर्शन कर लिए उन्होंने और फिर समुद्र में फेंका। तो फिर जब फेंक दिया समुद्र में तो परशुराम जी अपनी प्राणों की रक्षा के लिए तैरने लग गए पानी में, कहीं किनारा आ जाए। यह देखकर गणेश्वर ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में लपेट कर घुमाया और भगवान विष्णु के बैकुंठ तथा भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम के दर्शन कराए। वहाँ परशुराम ने राशेश्वरी श्री राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। इस प्रकार जमदग्न ने परशुराम श्री गणेश जी की सूंड में घूमते हुए अंत में पृथ्वी की अडक में आ गिरे, पृथ्वी पर गिर गए और उस समय उनको चेत हो गया तथा गणेश्वर कृत स्तंभन से भी वे मुक्त हो गए। तभी उन्होंने जगत गुरु शंकर प्रदत्त भगवान श्री कृष्ण के देव दुर्लभ स्त्रोत और कवच का स्मरण किया तथा समस्त शक्ति से संपन्न होकर अपने परशु से उन्होंने समस्त विघ्न नाशक गणाधिराज पर प्रहार कर दिया। किंतु गणराज ने अपने पूज्य पिता के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने की दृष्टि से उसे अपनी ही बाएं दांत से पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप उस तेजस्वी परशु ने गणेश जी का दांत मूल सहित काट दिया और वह परशु भृगुनंदन के हाथ में पुनः जा पहुंचा। परशुराम जी ने अपना परशु फेंका था तो गणेश जी ने उसका सम्मान किया कि हमारे पिता का है, दिया हुआ गणेश उनको, तो कोई बात नहीं, अपने दांत पे रोक दिया। तो दांत से रोका तो दांत जड़ से ही कट गया और फिर वो परशु वापस अपने परशुराम जी के हाथ में चले गया। गणेश्वर का दांत टूटते ही अत्यंत भयंकर शब्द हुआ, धरती आकाश के साथ समस्त दिशाएँ कांप उठी, पर्वत हिल गई और समुद्र में ज्वार आ गया। तो गणेश्वर के मुख में रक्त का फटवारा छूट निकला, लोहित धार के साथ टूटा हुआ दांत धरती पर आ गिरा। क्यों ना एक सुंदर सा गीत चलाएं और इसके बाद आगे बढ़ें।

0: सिद्धि विनायक गणपति देवा, चाहूं मैं सदा नाथ की सेवा।
1: तो राजेंद्र जी, जैसे कि आप अपने अभी आप हम सबको बताए कि और पार्सू से और कैसे वो एक दंत गणेश जी के, थोड़ा सा और सुना दो।
0: हाँ, वो परसु से जब जैसे ही परसु दंत पे लगा तो लोहित धार से खून एकदम निकला, धार एकदम, और सात दांत टूटा, उसके सात सात दांत टूटा और धरती पे एकदम धड़ाम से गिर गया,
1: कट के गिरा। तो ये तो हम अब सुन लिया है, पर अभी वृतांत बाकी है। और शांद्रा जी जो हम सब के साथ यहाँ उपस्थित है आज स्टूडियो में, तो सांद्रा जी कभी, क्योंकि ये बात हुआ राजेंद्र जी कि मैंने गया और मूर्ति किनने को पूजा का दुकान में, तो मैंने देखा मूर्ति और लगा कि ये मूर्ति तो मैं नहीं खरीदने वाला हूँ, क्योंकि उसमें एक सुर टूटा हुआ था,
0: एक उदंत
1: तो पता नहीं था इसका मतलब। सांद्रा जी, आपको कभी ऐसा हुआ कि नहीं?
2: ये बात है कि मुझे गणेश जी की मूर्ति को देखकर ये चकित नहीं हुई मैं, लेकिन माना जाता है, हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि टूटा हुआ मूर्ति खरीदना नहीं चाहिए। ये गणेश जी की बात नहीं है, वैसे ही आप मूर्ति खरीदो और देखो कि कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ पूरा नहीं है, खंडित है, तो उसे अपने पूजा स्थान में धर कर पूजा नहीं करनी चाहिए।
1: वैसे तो ना सिर्फ मूर्ति टूटा हुआ, घर में कोई भी चीज टूटा,
2: कोई भी सामान टूटा हुआ सामान नहीं रखना चाहिए।
1: बोले जो घड़ी ना चले तो फेंक दिया जाए।
2: हाँ, और टूटा हुआ बर्तन भी नहीं रखते हैं ना, कहते हैं लक्ष्मी नहीं आते हैं, तो टूटा हुआ मूर्ति तो जरूर नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन आज मुझे भी राजेंद्र जी से ये कहानी जो है, ये जो कथा है कि कैसे गणपति बप्पा की एक दंत टूटी हुई है, टूटा हुआ है, ये आज मुझे भी समझ आई।
1: तो दोस्तों, आप सुनते रहना क्योंकि अभी वृतांत बाकी है। तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम आगे बढ़ते हैं, और संध्रा जी का समझ में आ गया है कि क्यों दांत गणेश जी का एक टूटा हुआ।
0: हाँ, संध्रा जी समझ गई है, तो सभी लोग समझ ही गए होंगे। तो जैसे ही टूटा दांत धरती पर गिर गया तो उससे समूचे कैलाश शिखर पर कोलाहल होने लगा। कार्तिकेय, कैलाश पर्वत आप जाने लगा, कैलाश पर्वत कहाँ रहे?
1: नहीं जाना है, पर कहाँ पर कैसे
0: आप जाने लगे ना?
1: नहीं जान,
2: जाना है राजेंद्र जी, आप लेके चलो।
0: हाँ, लेके चलेंगे सबको कैलाश पर्वत पे। तो उस कैलाश पर्वत पे कार्तिकेय, वीरभद्र, भैरव, नंदीश्वर एवं समस्त प्रथम गण क्या हुआ करते हुए दौड़ पड़े। सुनने में देवता अत्यंत भयभीत हो रहे थे। भगवान शंकर उस समय निंद्रित अवस्था में थे, उस शब्द से उनकी निंद्रा भंग हो गई। उस शब्द मतलब जैसे वो आवाज हुई दांत गिनने की, वैसे भगवान शंकर की नींद भी टूट गई और सब लोग क्या हुआ ऐसे करके भार गए। गिरिजानंदनी ने वह शब्द सुना तो तुरंत दौड़ी आई और द्वार लोहित देखकर क्षुब्ध होती हुई बोली, देखते हुए क्या बोली, पुत्र यह क्या हुआ, तेरे मुख से रक्त बह रहा है और धरा भी रक्तमयी हो रही है। धरा मतलब जमीन
1: रक्त से
0: वो क्या हुआ,
1: रक्त बोले खून ना।
0: हाँ, परंतु गणेश्वर जी कुछ लज्जित से, कुछ रुआओं से मौन एवं शांत सिर झुकाए खड़े रहे, उन्होंने माता को कुछ उत्तर नहीं दिया। तब पार्वती जी ने कुमार कार्तिकेय जी से पूछा, पुत्र तुम ही बताओ यह क्या हुआ, इसका दांत कैसे टूट गया। कार्तिकेय वहाँ उपस्थित थे ही, उन्होंने सब कुछ स्वयं देखा ही था, इसलिए सब विवरण अद्योपांत सुनाते हुए बोले, क्षण भर में ही ऋषि ने परशु प्रहार कर दिया, अन्यथा मैं ऐसा कदापि न होने देता। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है जैसे हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला कि एक मिनट में, तुरंत क्षण में परशुराम जी ने प्रहार कर दिया और ये ऐसे हो गए, नहीं तो मैं ऐसे नहीं होने देता। इसी समय शिवजी भी वहाँ आ गई। पार्वती जी ने दुखित मन से इनसे निवेदन किया, स्वामिन आप समदर्शी हैं, मेरे पुत्र गणेश्वर और आपके शिष्य परशुराम में से दोष किसका है, यह निर्णय आप स्वयं ही कर सकते हैं। हे प्रभु, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नारी तो अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी एवं जड़पति को भी सदैव भगवान के ही समान समझती है। पतिव्रता नारी के तेज की समानता तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि और भगवान भास्कर भी नहीं कर सकते, इसलिए मेरे लिए भी आपके समान कोई नहीं है। तब आपके अतिरिक्त इसका निर्णय भी अन्य कौन कर सकता है। उधर परशुराम में भगवान शंकर को देखा तो उनके चरणों में प्रण हो भय रहित रूप की उनकी सेवा करने लगी। यह देखकर पार्वती जी ने परशुराम से कहा, महाभाग हे राम, तुम महर्षि जमदग्नि के अंश से उत्पन्न परम सती देवी रेणुका के पुत्र तथा देवादिदेव परमात्मा त्रिपुरारी के शिष्य हो। तुम्हारा मन शुद्ध है, इसलिए अशुद्धता का कोई कारण नहीं समझ रही हूँ। वत्स, तुमने जगतगुरु सर्वेश्वर से जो अमोघ परशु प्राप्त किया था उसकी प्रथम परीक्षा क्षत्रियों पर की और अब दूसरी परीक्षा गुरुपुत्र पर ही कर बैठे। पुत्र, त्रुटियों का निर्देश है, श्रुतियों का निर्देश है कि गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, किंतु तुमने तो गुरुपुत्र को ही एक दांत निर्दयतापूर्वक समूल काट दिया। यदि यही अभिष्ट था तो फिर इसका मस्तक ही क्यों न काट दिया। चराचर विश्व के आत्मा रूप भगवान शंकर का अमोघ अस्त्र पाकर तो एक श्रृंगाल भी वनराज सिंह का वध करने में समर्थ हो जाएगा। देखो परशुराम, गणेश साक्षात श्री कृष्ण का ही अंश हैं। या जितेंद्रिया पुरुषों में श्रेष्ठ होने के कारण तुम्हारे समान लाखों करोड़ों जीवों का वध करने में समर्थ हैं, किंतु वह हिंसा में विश्वास न करने के कारण कभी किसी पर हाथ नहीं उठाता। यही सभी देवताओं में प्रमुख होने के कारण ही प्रथम पूजा का अधिकारी बना हुआ है।
1: तो गणेश जी इसी कारण प्रथम पूजा का अधिकारी हुआ।
0: हाँ।
1: तो क्यों ना हम गीत को चलाते।
0: जरूर।

0: परशुराम को निरंतर देखकर गिरिराज नंदिनी को क्रोध आ गया और वे मुनिवर को मारने के लिए प्रस्तुत हुई। यह देखकर भयभीत हुए परशुराम ने मन ही मन अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम किया और फिर गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी। तभी भगवती पार्वती जी ने अपने समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले एक ब्राह्मण बालक को आता हुआ देखा। उसके परिधान छत्र दंड यज्ञोपवीत आदि सभी उज्ज्वल थे। मस्तिष्क पर भी चंद्रमा की कांति के समान चमकता हुआ तिलक लगा हुआ था। कंठ में तुलसी की माला, माथे पर शुभ रत्न जटित मुकुट और कानों में कुंडित सुशोभित थे। उनके अंगों पर रत्नाभरण थे तथा वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ माता पार्वती जी की ओर ही देख रहा था। वह ब्राह्मण बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था। कैलाशवासी आवल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी उसकी ओर टकटकी लगाए निर्मिमिशेष नेत्रों से देख रहे थे। भगवान शंकर ने उसे देखते ही मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। यह देखकर भगवती गिरिजा भी उसे प्रणाम की बिना न रह सकी। वस्तुतः वह साक्षात श्री हरि थे। भगवान शंकर ने उनके विराजमान होने का रत्नमयी सिंहासन प्रस्तुत किया। उनके स्थित होने पर विविध उपचारों से पूजन एवं स्तवन किया। उस पूजन से संतुष्ट हुए भगवान श्री हरि ने गंभीर रूप स्वर में कहा, आरंभ किया, चंद्रमौली, यहाँ की वर्तमान परिस्थिति के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भक्त का कहीं कुछ अमंगल हो और इसलिए मेरा सहस्त्रतार्थ सुदर्शन उनकी रक्षा में सदैव उपस्थित रहता है। परंतु यदि कोई गुरु की अवहेलना करे तो वह चाहे जो हो मेरा कृपा पात्र नहीं रहता और उसके प्रतिकार के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु विद्या और मंत्र का देने वाला होने के कारण इष्ट देव से भी 100 गुना श्रेष्ठ है। इसी कारण गुरु से अधिक कोई देवता नहीं माना जाता। वैसे भी भगवान शंकर महादेव हैं, इनसे बड़ा कोई देव नहीं और न गिरिराज नंदिनी से बढ़कर कोई पवित्र पतिव्रता ही है। गणेश्वर से अधिक कोई जितेंद्रिय नहीं और परशुराम के समान कोई गुरु भक्त शिष्य नहीं है। किंतु परशुराम द्वारा आज गुरुपुत्र की जो अवहेलना हुई है उसका मार्जन करने के विचार से मुझे यहाँ आना पड़ा। हे शिवे शिवप्रिय, आप जगत जननी हैं। गणेश्वर, कार्तिकेय और परशुराम भी आपके पुत्र के समान हैं। आपके और शिवजी के मन में परशुराम के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए बालकों के लिए इस विवाद में आप जो कुछ करेंगी वह किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं होगा। इन बालकों के मध्य जो विवाद उठ खड़ा हुआ है उसमें किसी का दोष नहीं। देव सर्वत्र ही बहुत प्रबल और प्रस्तुत विवाद भी देव योग का ही प्रतिफल है।
1: देव योग का प्रतिफल जो आपने सुंदर रूप से ये वृतांत हम सबको सुने रहे, ये बात है कि ये एक विसुंदर वृतांत है जिसमें क्योंकि हम सब भी कथा के माध्यम से और संदेश भी सुने हैं तो थोड़ा से बेचैनी भी हम सब हो रहे हैं। और जैसे कि इस समय आप हम सबको ये वृतांत धीरे धीरे समाप्ति की ओर हम सब बढ़ रहे हैं तो आशा ये है कि संद्रा जी भी हम सबको कुछ नई दलांस में इसके बारे में सुनाने वाले हैं।
0: हाँ।
1: तो क्यों ना संद्रा जी हम सबको सुना दे तो फिर हम ये कार्यक्रम के आखिरी ओर यानी कि जो और संदेश है उस ओर
0: बढ़ा जाएगा। जरूर संद्रा जी।
2: जी बहुत धन्यवाद। Zoals jullie al hebben gehoord, de katha van Parshuram en de reden waarom Ganesh Vridant, de Vridant van Parshuram en de reden waarom de slachtand van Ganesh Ji wordt afgebroken, zal ik heel kort in het Nederlands uitleggen. Parshuram, nou wie is Parshuram? Parshuram is niemand anders dan de Autarik, ja, de, ook wel aangeduid als Ram. Is de zesde incarnatie onder de Dashvatara van de god Vishnu in het Hindoeïsme. De zesde reïncarnatie van god Vishnu. En hij wordt beschouwd als een van de Chiranjeevis. Chiranjeevis, dat betekent langlevende en onsterfelijke. Dus hij zal nog steeds in ons midden zijn. Die aan het eind van de Kaliyuga zal...

0: मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश गजानन प्यारे लगे, तो गजानन तो सबको प्यारे ही लगते हैं और आपको भी गणेश गौरी गणेश पूजना ही चाहिए।
1: जरूर जरूर राजेंद्र जी, क्योंकि हमें ये वृतांत जो आप सुना रहे इसे सुनकर के भी कितना अच्छा लग रहा है कि आज हम सब कुछ है, कुछ भी तो ज्ञान के बातें कुछ भी और संदेश पाए हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में के माध्यम से हम सबको कुछ ना कुछ संदेश जो मिल रहा है। और आगे का क्या संदेश है राजेंद्र?
0: आगे का संदेश है कि वहाँ जो बात चल रही थी उसमें बोले कि इसलिए दोष भी किसे दिया जाए, शंकर जी बोले किसको दोष दिया जाए, यह भी एक प्रबल विवाद का ही विषय बन जाएगा। हिमगिरी नंदिनी, तुम्हारे पुत्र गणेश्वर तो वेदों में भी प्रसिद्ध है, इनके आठ नामों में एक नाम एक दंत तो बहुत ही प्रसिद्ध है, वे आठ नाम यह हैं। गणेश मेक दंता चा हीरम्बम विघ्न नाशकम लंबोदरम सूर्पकर्णम गजवक्रम गृहागजम। गणेश एक दंत, हेरम्ब विघ्ननाशक, लंबोदर सूपकर्ण, गजवक्र और गुहागज्र के नाम से सर्वत्र मंगल को करने वाले और सर्वत्र संकट का नाश करने वाले होते हैं। गणेश जी के नामस्तक स्त्रोत अपने अर्थों में संयुक्त एवं शुभ करने वाला होता है, जो भक्त इसका तीनों सानिध्यों में पाठ करता है वह सभी प्रकार से सुखी होता है और सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। उस स्त्रोत के पाठ से विघ्नों का नाश उसी प्रकार से हो जाता है जैसे गरुड़ के द्वारा सर्पों का नाश होता है। हे दुर्गे, इस स्त्रोत का प्रायण करने वाला गणेश्वर की कृपा महान ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाता है। इसके प्रभाव से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, पत्नी की अभिलाषा वाले को पत्नी और महामूर्ख को भी श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होती है, या निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। उस बामन भगवान ने जगजननी उमा को यह नामाष्टक स्त्रोत इस प्रकार बतलाया। ज्ञानार्थ वाचको गच्छ गणश्चा निर्वाण वाचका तयोरीशी प्रब्रह्मा गणेशम प्रणमायहम। एक शब्दा प्रधानार्थो दंतस्य बालवाचका बलम प्रधान सर्वेशम मेदकंदा नमाम्यहम। दीनार्थ वाचको हिश्चारंभा पालक वाचका दीनानां परिपालकम हीरंब प्रणमान्यमम। विपत्ति वाचको विघ्नो नायका खंडनार्थका विपत्ति खंडकाकारं नमामि विघ्नाय नायकम्। विष्णु दत्तेश्च नैवेद्यस्य लंबोदरं पुरा पित्रा दत्तेश्च विधिवन्दे लंबोदरं चातमः। सूर्पोकारो च यत्कर्णी विघ्नवारण कारणो संपद्दो ज्ञान रूपे चा सूर्पकर्णा नमाम्यहम्। विष्णु प्रसाद पुष्पम चा यन मूर्तिम मुनि दंतकम तद गजेन्द्र वक्त्रायुक्तम गजवक्रम नमाम्यहम्। गुहास ज्ञाग्रौ चा जातो यंबा विमूर्त हरलये वंदी गुहा गजम देवम सर्वदेवा गणपूजितम्। अर्थात गा ज्ञानार्थ वाचक और अणा निर्वाण वाचक है। इन दोनों गा और अणा अक्षरों के जो ईश्वर हैं उन गणेश्वर रूप पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। एक शब्द प्रधानार्थक और दंत शब्द बलवाचक है। इस प्रकार जो एक दंत भगवान सबसे अधिक बल प्रधान हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थ वाचक और अम्ब शब्द का पालक का वाचक है, इस प्रकार दोनों का परिपालन करने वाले हीरम्ब को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्न शब्द विपत्ति वाचक और नयन शब्द खंडवार्थनार्थक है, अतः जो विपत्तियों के नाशक है उन विघ्न नायक को मैं नमस्कार करता हूँ। प्राचीन काल में भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त नैवेद्य और पिता द्वारा समर्पित विविध प्रकार के मिष्ठानों के सेवन से जिनका उदर लंबा हो गया है उन लंबोदर को नमस्कार करता हूँ। उदर यानी पेट लंबा हो गया, मतलब
1: पेट
0: मिठाई खाने से
1: पेट
0: बढ़ गया। जिनके कान सूपा होता ना उसके समान हैं, तथा जो विघ्नों के निवारण में कारण समस्त संपदाओं का दाता तथा ज्ञान स्वरूप है उन सूर्पकर्ण गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि प्रदत्त भगवान विष्णु का नैवेद्य रूप पुष्प विद्यमान है, और जो गजेंद्र के मुख से संपन्न है उन भगवान गजवक्र को मैं नमस्कार करता हूँ। गणेश के इस नामाष्टक स्त्रोत का उपदेश करने के पश्चात भगवान श्री हरि ने परशुराम से कहा, भृगुनंदन तुमने गणेश्वर का एक दांत तोड़कर अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम इस दोष से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक जगत जननी पार्वती जी को संतुष्ट न कर लो या गिरिजानंदिनी सर्वशक्ति स्वरूपिणी प्रकृति से परे एक निर्गुण है, इन्हीं की शक्ति से गोलोकनाथ श्री कृष्ण भी शक्ति संपन्न हुए हैं, या समस्त देवताओं की भी माता है, अतः स्वप्न द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। परशुराम ने भगवान श्री हरि की आज्ञा शिरोधार्थ मानकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर भगवान अपने धाम को जाने के लिए प्रस्तुत हो गए, अंतर्धान हो गए। उसके पश्चात परशुराम ने पवित्र जल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने और फिर जगन माता पार्वती जी का स्तवन करने लगे। उन्होंने माता पार्वती के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और नेत्रों से आनंद्रश्रु आनंदाश्रु यानी आनंद के आंसू प्रभावित करते करुणा प्रार्थना के अंत में सहसा बोल उठे, रक्ष रक्ष जगन माता अपराधम क्षमस्व मे शिशूनाम प्राधीना कुतो माता ही कुष्यति। हे जगत जननी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। माता शिशुओं से जो अपराध हो जाता है उस पर माता कभी क्रोध नहीं करती अर्थात नहीं करती। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात रेणुकानंदन ने गिरिजानंदिनी के चरण पकड़ लिए और बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे। यह देखकर माता पार्वती जी से रहा नहीं गया, उनका वात्सल्य भाव उमड़ उड़ा। वात्सल्य मतलब बच्चों के प्रति जो भाव होता है माता का,
1: हाँ जी,
0: क्षमा कर देती है, तो वात्सल्य भाव उसको कहते हैं,
1: वात्सल्य भाव।
0: हाँ, वो बोली, आप मथुरा में जाएंगे तो वहाँ वात्सल्य ग्राम मिलेगा आपको।
1: क्या मिलेगा?
0: वात्सल्य ग्राम आश्रम।
1: वात्सल्य ग्राम आश्रम मथुरा में,
0: मथुरा में रितंबरा दीदी ने बनाया है। वे बोली, वत्स तुम चिरंजीवी हो, तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो, तुम्हें श्री गुरुदेव परमात्मा शिव की कृपा से सुदृढ़ भक्ति प्राप्त हो तथा तुम सर्वत्र विजयी हो, सर्वात्मा भगवान श्री हरि तुम पर सदा प्रसन्न रहे। माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त होने पर भृगुनंदन परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने सुना, सभी दिशाएं भगवान नाम से व्याप्त हो रही है, सर्वत्र उन्हीं को जय जय घोष सुनाई दे रहा है। ममतामयी पार्वती जी परम संतुष्ट होकर अंतापुर में चली गई। अब परशुराम जी भगवान एकदंत गणेश्वर का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर प्रतिपूर्वक उनका स्तवन करने लगे। इस प्रकार गणराज की प्रसन्नता प्राप्त कर परम गुरु भगवान शंकर को नमस्कार किया और उनसे आज्ञा लेकर तप करने के लिए तपोवन में चले गई। तपोवन कहाँ?
1: पता नहीं राजेंद्र जी कहाँ है, शायद सांद्रा जी को पता होगा।
0: हाँ, जो गंगोत्री के ऊपर गौमुख है, गौमुख से हौर ऊपर 14 किलोमीटर तपोवन है।
1: तपोवन
0: तो वहाँ तपस्या करने के लिए चले गई
2: जंगल में।
0: ओम गंग गणपतये नमः, श्री राघव कुंज बाबा भैरवनाथ नारायण ज्योत बाबा गंज बहराय की जय हो। तो इस प्रकार से ये आज का जो वृतांत रहा, इस प्रकार से रहा। तो अब हर सप्ताह की भांति इस बार भी हमारा जो
1: वो आखिरी गीत की ओर हम
0: आखिरी गीत की ओर हम पहुंच रहे हैं,
1: तो जरूर राजेंद्र जी आखिरी गीत की
0: बोल आपको क्या बोल है आखिरी
1: लागी छूटे ना, जो हमारा गीत होता है तो उसी ओर हम सब बढ़ने वाले हैं। और
0: तो क्यों ना हम लागी छूटे ना की ओर बढ़े।

को पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया, तो क्यों ना पुकारे। जैसे हम इस गीत की ओर बढ़ते हैं हमारा समय पूर्ण होता है, हमारा जो कार्यक्रम होता है 2 घंटे का कार्यक्रम में, ये हमारा जो बॉर्डर का गाना है इस पर और हम बढ़ते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो फाउन हिंदुस्तानी के श्रोताओं को जो हमें इतने प्रेम से सुनते हैं, और हमारा ये जो प्रोग्राम है उसके बहुत लोगों का फ़ोन भी आता है, उनको अच्छा लगता है। इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए मेरा नमस्कार, यानी राजेंद्र सिंह का नमस्कार।

हाँ जी सुनने वालों, अब तो हमारा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होने को आए हैं। आशा है कि ये जो वृदांत हमने आपके लिए रखी थी, कुछ भी इसमें आप निकाल कर अपने जीवन में जरूर उतारो। थोड़ी सी बात लेकर चलो, अच्छाई ही लेकर चलो, दुनिया ही बदल जाएगी। नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाते हैं। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज यहाँ का कार्यक्रम जो अपने समाप्ति पे आकर पहुँचे हैं, हम सब यहाँ से आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। और आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले जो सांद्रा घिसई दुबे, हमारे राजेंद्र सिंह जी जो पनेल के पीछे बैठे हुए हैं, और मैं हूँ आपका सेवक संजय जो आपके साथ ये कार्यक्रम को किए, आशा यही रखता हूँ कि जरूर कुछ न कुछ संदेश आपको पास पहुँचा होगा। और फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: सुनने वालों नमस्कार, ये है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और हमारे आज कार्यक्रम में सहयोग दे रहे श्रीमती केयर लिंदा जी और अनास्तासिया जी। एक कार्यक्रम जो हॉलैंड में होने वाले है, जिसमें स्पिरिचुअल के अंतर्गत में सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, और सद्गुरु जी जो फ्रेंच यानी कि फ्रांकरेक से यहाँ आने वाले हैं, तो हमारे कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं अनास्तासिया जी। अनास्तासिया जी, आप जो कहते हैं हम सबको कि हम गोरे लोग, और कैसे आप हिंदी कितना अच्छे से बात करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है।
1: धन्यवाद।
0: बड़ा धीरे से आपने कहे कि धन्यवाद, कहने के तात्पर्य यह है। दोस्तों सुनने वालों, अनास्तासिया जी कुछ सालों जो भारत में रहे हैं और भारत में रह करके अपना भाषा हिंदी खूब अच्छी तरीका से बात कर लेते हैं और उसमें मराठी भी बात कर लेते हैं। तो अनास्तासिया जी, पहले अपने बारे में हम सबको सुनाइए कुछ।
1: हाँ, तो मैं जब 4 वर्ष की थी तो मेरे पिताजी और माताजी एक आश्रम में, गोवा में स्थित एक आश्रम में रहने के लिए गए थे, और मैं 4 वर्ष की थी, तो तब से वहाँ 15 साल रहती थी आश्रम में, गोवा में। मैं स्कूल में जाती थी वहाँ गोवा में, और वहाँ से मैंने मराठी हिंदी दोनों सीखा। मुझे भी गोवन लैंग्वेज कोंकणी भी थोड़ी आती है। मैं जन्म से साधना में साधना कर रही हूँ। मेरे पिताजी माताजी मेरे जन्म के पहले साधना करने का शुरुआत किया था, और मैं साधना में बड़ी हो गई, और मैं छोटीपन से भगवान पर बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण बहुत बहुत प्यारा है, और मैं उनके साथ बहुत बात करती हूँ, तो ये मेरे बदल थोड़ा थोड़ा है।
0: अनास्तासिया जी, आपने अति सुंदर रूप से ये संदेश को रखे कि भगवान से प्रेम करना कैसे होता है, और इसी अंतर्गत में और जो जाकर के सद्गुरु जी हमारे देश हॉलैंड में आने वाले हैं, कार्यक्रम जो होने वाला है सेवाधाम में मंदिर में, हम सब अभी सुनने वालों जरूर उसके बारे में बात करेंगे कि कई बजे और कब और कहां पर कार्यक्रम को रखा जाएगा। पर अनास्तासिया जी, हमें थोड़ा से संदेश दीजिए कि सद्गुरु जी जो अपने बचपन जो फ्रेंच में जिनका जन्म हुआ में, और उन्होंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, उनके जब बायोग्राफी जब देखा जाए कि बचपन से उन्हें कुछ था भगवान के रुचि, थोड़ा से उसका और संदेश हम सबको लिए रख दीजिए।
1: हाँ, तो बचपन से मेरे पिताजी को भगवान में बहुत विश्वास था, लेकिन हमारे माता पिता भगवान में बहुत विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मेरे पिता के माता वो जीसस पर बहुत प्रेम करते थे, और वे पिताजी को भगवान के बारे में बहुत सुनाई देते थे। फिर पिताजी बड़े होते एक सुपर मॉडल बन गए, और सुपर मॉडल में वो काम करते थे, और फिर जापान में गए, जाकर उनको मेरे माताजी से मिलना हुआ। मेरे माताजी तब साधना में शुरू उन्होंने किया था, और फिर माताजी ने बाबा को, सद्गुरु को साधना में उनके बारे में सब बताया, और फिर तब से पिताजी को ऐसे लगा कि अब मुझ मेरा जो सर्च था या उनको बहुत ऐसे लगा लगता था छोटेपन में कि मुझे कुछ तो चाहिए, और फिर बाद में उनको लगा कि अब अपने मैंने ढूंढा जो मुझे चाहिए था, और फिर वे साधना करते करते, जैसे मैंने बताया जब मैं 4 वर्ष की थी तो हम आश्रम में गए थे, अभी मैं 22 इयर्स की हूँ, वहाँ साधना करते करते वे SSRF नाम का एक, जैसे गोवा में सनातन संस्था ऐसे नाम का ये है, SSRF एक ब्रांच है उससे, तो मेरे पिताजी उन इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उनने SSRF को सब संभालने का। और SSRF क्या है, वो सनातन साधना के तरह, लेकिन सब बाहर के लोगों के लिए, लाइक इंडिया में भी साधक आ सकते हैं SSRF में, लेकिन अब्रॉड ऐसे सब विदेशी लोग ऐसे जो साधना कर सकते हैं, क्योंकि विदेशी में थोड़ा अलग है इंडिया के तरफ। तो पिताजी ने ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उनको सबको साधना कैसे अच्छे से कर सकते हैं ऐसे सब सिखा रहे थे, नाम जप कैसे करना, भगवान को कैसे बुलाना, हमारे जो दोष है वो हमारे जो बेस जेलसी ऐसे सब जो दोष है हमारे में, तो वो कैसे निकाल कर गुणों को अंदर लाने के लिए ऐसे सब कैसे, तो फिर दूसरों लोगों को भी साधने बारे में कैसे बुलाना, कैसे बताना, कैसे उनको वो जो माया है उससे बाहर निकालने का, उनको चैतन्य पॉजिटिविटी ऐसे सब लाने के लिए कैसे साधना करें कर सकते हैं, नाम जप, दोष निर्मूलन, ऐसे सब छोटे छोटे जो है वो कैसे सब अच्छे से करने का, और भगवान के चरणों में कैसे जा सकते हैं, ऐसे सब वो सब विदेशी साधकों को सब लोगों को सिखा रहे थे। और वो करते करते हमारे जो गुरु है इंडिया में, उनके गाइडेंस और उनके मार्ग से मेरे पिताजी 2018 में सदगुरु तक पर पहुंचे, और अभी हम एक जर्मनी आश्रम कर रहे हैं। तो 2021 में हमारे गुरु ने बोला कि जर्मनी में हम आश्रम बनाएंगे, तो पिताजी को पूरे जर्मनी को फिर कर उनको बोला कि आप एक आश्रम ढूंढो। तो 2 वर्ष मेरे पिताजी पूरे जर्मनी आश्रम ढूंढने के लिए उन्हें प्रवास किया, और फिर 2022 में हमको आश्रम मिला, एक जर्मनी आश्रम अलरोडे में। तो अभी मेरे पिताजी उनके रेनोवेशंस और साधकों को साधने के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं आश्रम में, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी यहाँ ले रहे हैं। तो ये थोड़ा मेरे पिताजी के बारे में है।
0: बहुत अच्छा रूप से आपने ये संदेश को रखे कि देखा जाए कि आपका यानी कि सद्गुरु जी जो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने सिर से लेकर के हम सब के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं हमने जीना सीख लिया, पर जीना असलियत में जहाँ पर आनंद को प्राप्त कर सके तो साधना, और कैसे साधना होगा, इस अंतर्गत में सद्गुरु जी जो हॉलैंड देश सेवा धाम में आने वाले हैं। अनस्तासिया जी, मैं आपसे ये प्रश्न रखना चाहता हूँ कि सेवा धाम में जैसे कि हमने सुने हैं कि 17 को आप लोग फ्रेंच से छूटने वाले हैं और 18 को आप लोग नेदरलैंड्स यानी कि डेन हाग में पहुंच जाएंगे, तो कई बजे और कहां पर ये कार्यक्रम रखा जा रहा है?
1: तो 19 सितंबर को हिंदू सेंटर सेवा धाम इस जगह एक प्रोग्राम चलेगा।
0: सेवाधाम जो डेन हाग शहर में है अल्बर्टाइन प्लेन पे, और वहां पर ये कार्यक्रम चलेगा 19 सितंबर को।
1: हाँ, वो एक दिन और दूसरा दिन भी 20 सितंबर, दो दिनों में वो प्रोग्राम होगा।
0: और अनस्तासिया जी, जब देखा जाए कि 19 सितंबर शनिवार होता है, तो कितने बजे से कितने बजे तक कई सेशंस रखा जाएगा, इसके बारे में हम सबको जरूर बताइए।
1: हाँ, तो पहला सेशन 10 o'clock इस बजे होगा,
0: 10 बजे सुबह में।
1: हाँ, 10 बजे सुबह में शुरू होगा। मैं मेरे पिताजी को हिंदी में इंट्रोड्यूस करूंगी और फिर गणेश श्लोक बताऊंगी और फिर बाद में पिताजी श्री राम नाम जप का एक मेडिटेशन सेशन लेंगे। उसके बाद हम मेरे पिताजी एक्सप्लेन करेंगे कि नाम जप कैसे चलता है और कैसे हमको लाभ मिलता है नाम जप करते, और किसी को भी प्रश्न या ऐसे कुछ पूछना है तो इस टाइम में भी पूछे सकते हैं।
0: और देखा जाए ट्रांसलेट करने वाले यानी कि अनस्तासिया जी जो रहेगा, और हर रविवार को वहाँ हम लोग सेवाधाम में मंदिर भी लगाते हैं जो कि दिन में 2 बजे से शुरू होता है 6 बजे तक, और इसमें कार्यक्रम रविवार का कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक है?
1: रविवार का कार्यक्रम 10 से 12 बजे
0: तक। तो दोस्तों सुनने वालों, आपने सुने हैं कि हमारे देश में और हम सब को और संदेश देने के लिए सद्गुरु जी जिन्होंने बहुत से तपस्या किया है, बहुत सा और फ्रंट वार्डिंग भी पाए हैं और जाकर के हमारे साधना के लिए स्पिरिचुअल के लिए कैसे किस प्रकार से हम सब उस पे और ध्यान दे सकते हैं, और इस प्रकार से जो यहाँ डेन हाग में कार्यक्रम होने वाला है। और अनस्तासिया जी, हम सब के जो अभी और भी संदेश सुनाने वाले हैं, कहने के तात्पर्य ये है कि हम अपने पितरों के बारे में क्या कर सकते हैं। अनस्तासिया जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और सदगुरु जी हम सबको क्या संदेश सुनाने वाले, क्या हम सबको अभी से कुछ आप सुना सकते हो?
1: हाँ, तो अब थोड़े दिनों में पितृ पक्ष आने वाला है। तो पितृ पक्ष क्या होता है? जब पितृ दोष हमारे ऐसे बहुत लेवल्स होते हैं, तो पाताल होता है, फिर भूमि तत्व, फिर ऐसे दूसरे दूसरे लेवल्स होते हैं भगवान तक। तो ये पितृ पक्ष क्या होता है? जब पितृ दोष हमारे तो रीजन होता है, वहां वे नीचे ऊपर से नीचे आते हैं और उनका हमारे पर इफेक्ट और होता है। तो उन दिनों में हम कैसे पितृ दोषों को के जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं उनसे कैसे हम सेफ रख सकते हैं? तो हम कैसे सेफ रख सकते हैं हमको? तो एक होता है नाम जप करने का, श्री दत्तात्रेय का। तो दत्त श्री दत्त जी पितृ दोषों को यहाँ से भगवान तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इनका वो भगवान होता है। तो उन पितृ पक्ष के समय रोज दत्त जी का नाम जप कर किया तो हमको पितृ दोषों से कुछ होता नहीं।
0: बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं अनस्ताशिया जी, हम सब यहाँ पर कभी कभी लोग अपने मुसीबतों को लेकर के और हम कहीं मंदिर में या कहीं मुसीबत के जहाँ पर पहुँच जाते हैं, कोई हल नहीं मिलता है और हल नहीं मिलता है, और जबकि हमारे अपने हमारे पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इस पे जो हम ध्यान दे तो हम उससे कितना बच सकते हैं ना। हम देख रहे हैं हमारे सदगुरु जी भी कुछ शायद हम लोग के साथ और बातने वाले हैं, तो हो सके तो सदगुरु जी से और हो पाए तो हम सबको सुना दे। सदगुरु जी को भी नमन करते हुए अगर हो सके तो आप थोड़ा से कुछ संदेश सदगुरु जी से हम सबके लिए यहाँ के रेडियो के वास्ते कुछ सुना सकते हैं?
1: हाँ, तो ये मेरे पिताजी हैं सद्गुरु सीरियक वाले, वे अभी हॉलैंड में आएंगे प्रसार करने के लिए। उन हम सबको नाम जप और साधना के बारे में बताने के लिए अभी पिताजी थोड़ा एक छोटा मैसेज बताएंगे साधने के बारे में।
2: नमस्कार संजय, I live in India for almost 12 years. Come to India for more than 25 years now, since 1999, and live in ashram to practice the beauty and knowledge of Sanatan Dharma and India. And this for us is not making this knowledge available for people in the West. Because the importance of sadhana, spiritual practice, because even many Hindus who live abroad, even though they have learned the all this sanskar of shastra, of the science of spirituality, they actually are not practicing it, or they don't know all the knowledge also. So I think this is also why we are traveling in caravan, speaking in temples to share the knowledge. Because people from India, or who have born in India, or grow up, or born also outside India, they have that understanding, that knowledge, but they don't know sometimes the why and how to put it into practice. So this is in a way what we will be sharing also in the temple. And this is a different lecture also. I'm traveling across the world and as we're doing lecture in different temple also. And they understand immediately the knowledge, like we will be speaking about Pitru Dosh, about this concept of departed ancestor. By God's grace, we all know this knowledge. And the West people, we have to start from scratch, from zero, because they have no concept of the concept of Pitru Dosh. And sometimes the solution is very simple, but we have to do it into practice. It's not only rituals, of course there is rituals, but there's chanting also. Chanting like what we call Namjap or Namasmaran of Sri Gurudev Datta. Myself, that was my biggest anubhuti, spiritual experience, before I went to India, because whatever I was experiencing, didn't know. And I was smoking, I was in 3 days when I started chanting Sri Gurudev Datta. I stopped smoking within 3 days.
0: So there is a lot of things, so you can, by chanting, you can progress in your life.
2: Of course, you, not only you make progress, but you also give momentum to your departed ancestors. That's what people don't know. You free also your ancestor who are in a way in Vuva Lok or the different Lok, to be able to move on and get reborn. So not only your problem can be alleviated, and at the same time you give them that momentum. So that's why also there is this ritual, puja or ritual that can be done. But puja or ritual has limitation. There are few places in India where this special ritual is done for ancestor, but the chanting namja, it is in our hand. And this is something we can do. And that is the power of Sri Gurudev Dutta. We have even published on our website. That's why we have a website called ssrf.org. And we have published more than 900 articles of all the knowledge from actually based on Hinduism. And of course, the science of spirituality. And we explain a lot about this concept of Pritu Dosh. And so many testimony we have from people across the world and religion, they were able to overcome many problems, addictions, depression, insomnia, the different time, because the root cause in today's time, often the problem that people see is that it is addressed at the physical level or psychological level. But sometimes the root cause may be actually spiritual in nature, and people don't know. All the modern science is not taking that into consideration, except of course in India, where that knowledge of Pritu Dosh is known, but not all known in all India.
0: We are very happy that Sadhguruji is visiting Holland at Den Haag, Sewadham. So I'm very glad to meet Sadhguru, and so I think also everyone that are tuned now at Fahon Hindustani Radio shall be at Sewadham at 19 September. There are sessions 19 September and also sessions Sunday 20 September. So I cannot wait to see you, Sadhguruji. Namaskar.
2: Namaskar, and see you in a few days.
0: नमस्कार अनस्ताशा जी, आपको भी नमस्कार कर कहते हूँ, और ये कहना चाहूंगा कि आप मराठी में नमस्कार कर देना प्लीज़।